जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जैनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है, ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
6: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, जहां मन भय से मुक्त हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां मानवता सबसे बड़ा धर्म हो, वहीं सच्चे राष्ट्र का निर्माण होता है। महापुरुष केवल इतिहास के पन्नों में नहीं रहते, उनके विचार हर पीढ़ी को नई दिशा देते हैं।

पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए कैसे।

से जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डे

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर एक नए महापुरुष के जीवन परिचय के साथ में। जागृति जी, आज इस विशेष कार्यक्रम में हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार, शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर को। श्रोता साथियों, हर वर्ष 7 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। यह दिन केवल उन्हें याद करने का अवसर नहीं है बल्कि

0: प्रतिष्ठित एवं समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक चिंतन थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। परिवार का वातावरण साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति से परिपूर्ण था, जिसका गहरा प्रभाव बालक रविंद्रनाथ पर पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही प्राप्त की थी। श्रोताओं, पारंपरिक विद्यालयों का कठोर वातावरण पसंद नहीं था, इसलिए उनके लिए घर पर ही कई विषयों के विद्वानों की व्यवस्था की गई थी।
1: जी जी।
0: उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, संगीत और चित्रकला का अध्ययन किया।
1: बिल्कुल जागृति जी, कम उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता, मानव जीवन की संवेदनाएं और प्रेम का अद्भुत चित्रण मिलता था। श्रोता साथियों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और गीत जैसी अनेक विधाओं में लेखन किए हैं। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें आज रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि ने जागृति जी उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई। वर्ष 1913 में उन्हें इसी कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई साहित्यकार बने। उनकी लेखनी में केवल शब्द नहीं थे श्रोता साथियों, बल्कि मानवता, प्रेम, करुणा और जीवन के गहरे दर्शन समाये हुए थे।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हमने बताया था कि उन्हें कई विषयों का ज्ञान था। सन 1878 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहाँ की औपचारिक शिक्षा उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकी। वे बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। किशोरावस्था में उनकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित होने लगी। धीरे धीरे वे बंगला साहित्य के प्रमुख लेखक बन गए। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, गीत और यात्रा वृतांत सहित लगभग हर साहित्यिक विधा में उत्कृष्ट रचनाएं की।
1: बिल्कुल।
0: उनकी भाषा श्रोताओं सरल थी, भावपूर्ण थी और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी।
1: बिल्कुल जागृति जी, रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि शिक्षा बच्चों के मन पर बोझ नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास का माध्यम होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ विद्यार्थियों को खुले वातावरण में प्रकृति के बीच सीखने का अवसर दिया जाता था।
0: जी हाँ।
1: वे चाहते थे कि शिक्षा बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों का विकास करे। आज की नई शिक्षा नीति में भी अनुभव आधारित शिक्षा, रचनात्मकता और समग्र विकास पर जो जोर दिया जाता है, उसकी झलक रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार में बहुत पहले दिखाई देती थी। कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे राष्ट्रभक्त थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद मानवता से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे श्रोता साथियों कि देश से प्रेम का अर्थ केवल सीमाओं से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के लोगों, संस्कृति, प्रकृति और मूल्यों का सम्मान करना भी था।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला लिखा था। यह विश्व इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। उनका संदेश था कि दुनिया तब सुंदर बनेगी जब लोग एक दूसरे के धर्म, भाषा और संस्कृति का सम्मान करेंगे।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन परिचय से हम अवगत करवा रहे हैं, तो ये बातें हम और भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। और जैसा कि गीत से पहले हम बातें कर रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन परिचय को लेकर, हमने जाना था साहित्यिक जीवन की शुरुआत को लेकर, साथ में उनकी शिक्षा को लेकर, जन्म एवं परिवार को लेकर। यहीं अगर उनकी रचनाओं के बारे में हमारे श्रोता साथियों को अंजलि हम बताएं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर का साहित्य अत्यंत विशाल और बहुआयामी था। उनकी रचनाएं गीतांजलि, गोरा, घरे बेरे, डाकघर, रक्त कर्पी, राजा, मानसी, चोखेर बाली, योगा योग, नौका डूबी, उन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें आज रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आज जब समय तेजी से बदल रहा है तब उनके विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे हमें सिखाते हैं कि आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति को भी संजो कर रखना चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार, विज्ञान के साथ संवेदनशीलता और विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है श्रोता साथियों कि हम पढ़ने की आदत विकसित करें, अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करें, समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे का वातावरण बनाएं। कहना चाहेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान तभी सार्थक है, जागृति जी, जब वह मानवता के काम आए।
0: जी हाँ,
1: उन्होंने अपने विचारों से लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाया, शिक्षा को नई दिशा दी और साहित्य को समाज सुधार का सशक्त माध्यम बनाया। उनकी पुण्यतिथि पर श्रोता साथियों हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में शिक्षा, संवेदनशीलता, ईमानदारी और मानवता के मूल्यों को अपनाएंगे। हम अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देंगे।
0: जी हाँ,
1: पुस्तकों से मित्रता करेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे और समाज में प्रेम, शांति और सहयोग की भावना को मजबूत बनाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर की अमर कृति गीतांजलि ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई थी। इस काव्य संग्रह के अंग्रेजी अनुवाद ने पश्चिमी देशों में और अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की। वर्ष 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई साहित्यकार बने थे।
1: जी जी,
0: इस उपलब्धि ने भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई थी। श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थे। वे महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे और उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, लेकिन अंजलि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये सम्मान लौटा दिया। उनका ये कदम भारतीय स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन हमें ये एहसास कराता है कि एक सच्चा इंसान वही है जो अपने ज्ञान, प्रतिभा और संवेदनशीलता का उपयोग केवल अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए करता है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र, साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला और सामाजिक चिंतन में यह सिद्ध किया कि विचारों की शक्ति किसी भी परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव होती है। इसी के साथ जागृति जी, रविंद्रनाथ ठाकुर का संदेश हमें बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि विवेक, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास करना है।
0: बिल्कुल,
1: जब शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ते हैं तब समाज में विश्वास बढ़ता है। जब साहित्य के साथ संवेदना जुड़ती है श्रोता साथियों, तब लोगों के दिल बदलते हैं और जब ज्ञान के साथ विनम्रता जुड़ती है तब एक मजबूत और मानवीय राष्ट्र का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व बहुत ही सरल, विनम्र और संवेदनशील, साथ ही मानवीय भी था। वे जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की बात करते थे। वे प्रकृति प्रेमी थे और मानते थे कि मनुष्य का विकास प्रकृति के साथ जुड़कर ही संभव है।
1: जी जी,
0: उनका दर्शन प्रेम, शांति, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। उन्होंने जीवन भर अंधविश्वास, संकीर्णता और भेदभाव का विरोध किया। श्रोताओं, 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में इस महान विभूति का निधन हो गया। उनका शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया लेकिन उनकी रचनाएं, विचार और आदर्श आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। उनके विचार हमें बताते हैं कि यदि हम सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सत्य भी बाहर रह जाएगा।
1: जी हाँ जागृति जी, महापुरुषों की सबसे बड़ी विरासत उनकी संपत्ति नहीं बल्कि उनके विचार होते हैं। जो व्यक्ति सीखना, सोचना और दूसरों के लिए जीना नहीं छोड़ता वही सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीता है।
0: बिल्कुल,
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन से हमें ये सीखने को मिला कि हम ज्ञान को अपना प्रकाश बनाएं, मानवता को अपना धर्म बनाएं सेवा को अपना जीवन का उद्देश्य बनाएं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को बस यही कहना चाहेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर केवल एक महान कवि नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के अमर प्रतीक थे। उन्होंने अपने साहित्य, संगीत, शिक्षा और मानवीय मूल्यों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या पुरस्कार में नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए किए गए कार्यों में होती है।
1: बिल्कुल,
0: आज भी उनकी रचनाएं नई पीढ़ी को संवेदनशील, सृजनशील और राष्ट्र प्रेमी बनने की प्रेरणा देती है। इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जीवन और उनका साहित्य सदैव अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत बना रहेगा।
1: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में हमने बहुत अच्छी तरीके से रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन परिचय से श्रोता साथियों को अवगत कराया है, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से, उस कहानी का शीर्षक है दोस्ती का महत्व, जो कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। साथियों, मित्रता वो रिश्ता है जिसे न खून का संबंध चाहिए और न ही किसी स्वार्थ का सहारा। ये केवल विश्वास, प्रेम, सम्मान और अपनत्व की मजबूत नींव पर टिका होता है। हम मनुष्य हैं और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले न तो अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और न ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में परिवार हमें जन्म से मिलता है दोस्तों, लेकिन मित्र हम स्वयं चुनते हैं। यही कारण है कि सच्चा मित्र हमारे जीवन का सबसे अनमोल उपहार माना जाता है। दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने, हंसी मजाक का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने, सही मार्ग दिखाने और जीवन को बेहतर बनाने का नाम है। तो आज मैं आपको दोस्ती के महत्व को लेकर एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, और उस कहानी का शीर्षक है दोस्ती का महत्व, जो कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस तरह से। एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था निखिल। निखिल पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेहनती था और अपने सपनों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी था। दोस्तों, वह हमेशा कहता था कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सके। लेकिन उसकी एक कमी थी दोस्तों, वो किसी से अधिक खुलता मिलता नहीं था। उसे लगता था कि दोस्ती समय की बर्बादी है। वो अपने काम से काम रखता और अकेले ही स्कूल जाता, अकेले लौटता, अकेले पढ़ता। गाँव के बच्चे कई बार उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते श्रोताओं, लेकिन वो हर बार मना कर देता था। उसी विद्यालय में एक विवेक नाम का लड़का था। विवेक स्वभाव से बहुत ही हसमुख था, सहयोगी और मिलनसार था। वो हर किसी की मदद करता था दोस्तों, सबके साथ सम्मान से पेश आता। उसने कई बार निखिल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन निखिल हमेशा विनम्रता से कह देता कि मुझे दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। विवेक मुस्कुरा देता और कहता, कोई बात नहीं, कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। इसी तरह साथियों, समय बीतता गया। एक दिन विद्यालय में विज्ञान की प्रदर्शनी की घोषणा हो गई। सभी विद्यार्थियों को समूह बनाकर मॉडल तैयार करना था। निखिल ने सोचा कि वो अकेले ही सब कर लेगा, उसने किसी को अपने साथ नहीं लिया। दूसरी ओर विवेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी श्रोताओं बांट ली। कोई चित्र बना रहा था, कोई सामग्री जुटा रहा था, तो कोई मॉडल तैयार कर रहा था। काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी तरह श्रोता साथियों, निखिल दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन प्रदर्शनी के ठीक दो दिन पहले उसका मॉडल गलती से टूट गया। उसकी सारी मेहनत एक पल में बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि अकेले चलना हमेशा आसान नहीं होता है। उसी समय विवेक वहां पहुंचा। उसने टूटा हुआ मॉडल देखा और बिना कुछ कहे अपने साथियों को बुला लिया। चलो दोस्तों, पहले निखिल का मॉडल ठीक करते हैं, उसने कहा अपने दोस्तों से। सबने मिलकर देर रात तक काम किया। किसी ने गोंद लगाई, किसी ने रंग किया, किसी ने नई नई सामग्रियां जुटाई। कुछ ही घंटों में साथियों, मॉडल पहले से भी बेहतर बन चुका था। निखिल एकदम हैरान था। उसने धीरे से पूछा, मैंने तो कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? विवेक मुस्कुराया और बोला, दोस्ती कोई सौदा नहीं है दोस्त। सच्चा दोस्त ये नहीं देखता कि सामने वाले ने उसके लिए क्या किया है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। ये शब्द निखिल के दिल को छू गए। अगले दिन प्रदर्शनी हुई। निखिल और विवेक के संयुक्त प्रयास की सबने सराहना की। दोनों को विशेष पुरस्कार भी मिले दोस्तों। पुरस्कार से अधिक खुशी निखिल को इस बात की थी कि उसे एक सच्चा मित्र मिल गया था। उस दिन के बाद निखिल बदल गया। अब वो दूसरों की मदद करने लगा था। किसी को पढ़ाई में परेशानी होती तो वो समझाता, कोई उदास होता तो उसका हौसला बढ़ाता। कुछ वर्षों बाद दोनों ने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ भी उनकी दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में दोनों ने मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया। शुरुआत आसान नहीं थी दोस्तों, पैसे कम थे, अनुभव कम था और चुनौतियाँ भी बहुत सारी थी। एक समय ऐसा आया जब उनका व्यवसाय घाटे में चला गया। निखिल एकदम परेशान होकर बोला, शायद हमें ये काम बंद कर देना पड़ेगा। तभी विवेक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, जब हम स्कूल में टूटे हुए मॉडल को मिलकर बना सकते हैं, तो अपनी जिंदगी को क्यों नहीं संभाल सकते हैं? हार मानना समाधान नहीं है। इन शब्दों ने निखिल के अंदर नई ऊर्जा भर दी दोस्तों। दोनों ने फिर से मेहनत शुरू की, गलतियों से सीखा, नई नई योजनाएं बनाई और धीरे धीरे उनका काम सफल होने लगा। कुछ वर्षों बाद उनका छोटा सा व्यवसाय एक बड़ी संस्था में बदल गया। जब उनसे सफलता का रहस्य पूछा गया तो निखिल ने मुस्कुरा कर कहा कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी दोस्ती है। अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन सच्चे दोस्त के साथ इंसान बहुत दूर तक पहुंच सकता है। उनकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग भावुक हो गए। एक दिन गांव के विद्यालय ने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। दोस्तों, निखिल ने बच्चों से कहा, मैं पहले सोचता था कि दोस्ती समय की बर्बादी है, लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया कि सच्चा मित्र वो शक्ति है जो गिरने पर उठाता है, हारने पर हिम्मत देता है और सफलता मिलने पर सबसे ज्यादा खुश भी वही होता है। विवेक ने आगे कहा, दोस्त वही नहीं जो हर दिन साथ बैठे, सच्चा दोस्त तो वो है जो आपके अच्छे संस्कारों को मजबूत करे, आपकी गलतियों पर आपको रोके और आपके सपनों को अपना समझकर साथ चले।
श्रोता, पूरा विद्यालय तालियों से गूंज उठा उनकी बातों से। उस दिन बच्चों ने एक संकल्प लिया कि वे केवल दोस्त नहीं बनाएंगे बल्कि अच्छे और सच्चे दोस्त बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन की राह में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन हर कोई मित्र नहीं बनता। सच्चा मित्र तो वही है जो हमारे आंसुओं की भाषा समझे, हमारी चुप्पी को पढ़ ले और बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाए। मित्रता केवल साथ घूमने फिरने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने का नाम है। इसलिए जीवन में अच्छे मित्र चुनिए, स्वयं भी एक अच्छे मित्र बनिए और हर रिश्ते में विश्वास, सम्मान और अपनापन बनाइए। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक का बैलेंस नहीं है, बल्कि ऐसे मित्र है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। यही दोस्ती का वास्तविक महत्व है और यही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दोस्ती के महत्व को लेकर। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं दोस्ती से भरे इस गीत को।

इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में, और मैंने आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी और हमने बहुत प्यारा सा गीत भी सुना। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि आज लोग डिजिटल दुनिया में बहुत समय बिताने लगे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के साथ साथ एक दूसरे को दूर भी कर दिया है, और ऐसे समय में साथियों सच्ची मित्रता का महत्व और बढ़ जाता है। हमें ऐसे मित्र बनाने होंगे जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करें, हमें अच्छे संस्कार दे और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाए। इसी के साथ साथियों कहानी हमें ये सिखाती है कि मित्रता केवल साथ बिताए गए समय का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, सहयोग और निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। सच्चा मित्र हमारी सफलता पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है दोस्तों, और हमारी असफलता में सबसे पहले हमारा हाथ पकड़ता है। एक अच्छा मित्र हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, वह हमारी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने में मदद करता है। मित्र हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और कठिन परिस्थितियों में हमें हिम्मत भी देते हैं। सच्ची मित्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं साथियों, लेकिन एक सच्चा मित्र जीवन भर हमारा साथ निभाता है। मित्रता हमें प्रेम करना सिखाती है, सहयोग करना सिखाती है, त्याग और विश्वास का वास्तविक अर्थ हमें सिखाती है। यदि जीवन में एक सच्चा मित्र मिल जाए तो समझिए श्रोताओं की हमने सबसे अनमोल संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हम केवल अच्छे मित्र खोजेंगे नहीं, बल्कि स्वयं भी ऐसे मित्र बनेंगे जो दूसरों के जीवन में आशा, विश्वास और प्रेरणा का प्रकाश फैलाए, क्योंकि सच्ची दोस्ती ही वो शक्ति है जो साधारण जीवन को भी असाधारण बना देती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, और उम्मीद भी करती हूँ कि कहानी और कुछ जो बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथ ही फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनु आ लक्षण आपड़ने आपड़े में देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है। बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो। याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर नई प्रेरणादायी कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी हम हर रविवार को हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से नई और प्रेरणादायक कहानी आपको सुनाते हैं। तो आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज भी मैं कहानी को लेकर हाजिर हुई हूँ, तो आज हमारी कहानी का पहला विषय है दादी की खाली गुल्लक। जी हाँ बच्चों, एक गांव में आरव नाम का 11 साल का लड़का रहता था। उसकी दादी के कमरे में मिट्टी की एक पुरानी गुल्लक रखी थी। आश्चर्य की बात यह है बच्चों कि दादी उसमें कभी पैसे नहीं डालती थी, फिर भी हर शाम उसे हाथ जोड़कर अलमारी में रख देती थी। एक दिन आरव से रहा नहीं गया, उसने पूछा, दादी इसमें पैसे तो है ही नहीं, फिर आप इसे इतना संभाल कर क्यों रखती हो? दादी मुस्कुराई और बोली, बच्चों कि इसमें पैसे नहीं, मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन दादी उसे अपने साथ गांव ले गई। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। घर लौटकर दादी ने गुल्लक को हल्के से हिलाया और बोली, आज इसमें एक सिक्का और जुड़ गया। बच्चों आरव फिर से हैरान था। दूसरे दिन दादी ने एक गरीब बच्चे को पुरानी किताबें दे दी, फिर वही बात, आज गुल्लक और भर गई। तीसरे दिन उन्होंने घायल चिड़िया को पानी पिलाया। चौथे दिन किसी उदास पड़ोसी के घर बैठकर उसका मन हल्का किया। हर अच्छे काम के बाद दादी कहती, एक और सिक्का जुड़ गया। आरव बच्चों अब भी उलझन में था। कुछ महीनों बाद दादी बहुत बीमार पड़ गई। पूरे गांव के लोग उनके घर आने लगे, कोई दवा लेकर आया, कोई खाना, तो कोई रात भर सेवा करने बैठा। आरव ने पहली बार देखा कि जिन लोगों की दादी ने कभी मदद की थी वे आज बिना बुलाए उनके साथ खड़े थे। उस रात दादी ने गुल्लक आरव के हाथ में देकर कहा, अब इसे खोल कर देखो। आरव ने गुल्लक तोड़ी, अंदर एक भी रुपया नहीं था, बस एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, जिसने जीवन भर केवल पैसे जोड़े वह अमीर कहलाया, लेकिन जिसने लोगों का विश्वास, प्यार, दुआएं जोड़ी, वही सचमुच सबसे धनी बना। बच्चों आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने भी अपने कमरे में खाली गुल्लक रखी। फर्क सिर्फ इतना था कि जब भी वह कोई अच्छा काम करता, एक छोटी सी पर्ची पर उसे लिखकर गुल्लक में डाल देता। सालों बाद जब उसने गुल्लक खोली तो उसमें सैकड़ों पर्चियां थी, किसी की मदद करने की, पेड़ लगाने की, दोस्त का साथ देने की, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने की। उसे समझ में आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई बैंक नहीं,

कहानी हमें सिखाती है कि ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप किसी बच्चे को अपना खिलौना खेलने के लिए देंगे या कोई ऐसी चीज है जो उसे खुशी देगी, तो वो ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो आशा करती हूँ बच्चों की प्यारी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम सभी एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन कर ले। तो आइए बच्चों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

0: बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद अब मैं आपको अगली कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी का विषय है कि जिस दिन पूरे गांव ने झूठ बोला। जी हाँ बच्चों, एक गांव था जहाँ लोग अपने बच्चे को हमेशा सिखाते थे कि सच बोलना सबसे बड़ी बात है। लेकिन बच्चों को लगता था कि एक छोटा सा झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है। फिर क्या हुआ, एक दिन गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग शिक्षक ने बच्चों को बिना बताए एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने गांव के हर बड़े व्यक्ति से कहा कि कल पूरे दिन बच्चों से केवल झूठ बोलना और शाम को मैं कारण बताऊंगा। अगले दिन अजीब घटना होने लगी। माँ ने कहा कि आज खाना मत खाना, इससे ताकत कम होगी। पिता बोले कि पढ़ाई करने से कोई सफल नहीं होता। दुकानदार ने बोला कि ये खराब सामान सबसे अच्छा है। डॉक्टर ने मजाक में कहा कि दवा मत लेना, बीमारी अपने आप बढ़ेगी। बच्चों, सब बच्चे घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि किसकी बात सही है। शाम को सभी गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। शिक्षक ने बच्चों से पूछा, आज कैसा लगा? एक बच्चे ने कहा कि पूरा दिन डर लगा, किसी पर भरोसा ही नहीं हुआ हमें। दूसरे ने कहा कि अगर सब झूठ बोलने लगे तो दुनिया चल ही नहीं सकती। तब शिक्षक बोले कि यही कारण है कि एक छोटा सा झूठ भी केवल एक बात नहीं बिगाड़ता, बल्कि बच्चों, लोगों का भरोसा तोड़ देता है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है, उस दिन रिश्ते भी टूटने लगते हैं। उस दिन के बाद से गांव में एक नया नियम बना, गलती करने वाले को माफ किया जाएगा, लेकिन झूठ बोलकर गलती छिपाने वाले को कभी नहीं। धीरे धीरे वह गांव आसपास के इलाकों में विश्वास वाला गांव कहलाने लगा। तो बच्चों, ये प्यारी सी कहानी हमें सीख देती है कि सच बोलना केवल अच्छी आदत नहीं होती है, बल्कि हर रिश्ते की नींव होती है। धन, ज्ञान, सफलता दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास बहुत मुश्किल से लौटता है। इसलिए गलती हो जाए बच्चों, तो उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो कठिन परिस्थिति में भी सच नहीं छोड़ता। क्योंकि चरित्र की पहचान हमारी बातों से नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई से होती है। क्योंकि बच्चों, बहुत सी बार हम भी यही सोचते हैं, इतनी सी तो बात है, मम्मी पापा से झूठ बोल लेंगे, टीचर से झूठ बोल लेंगे, लेकिन यही इतनी सी बात कल को हमारे जीवन को बदल सकती है। इसलिए अगर हमारे जीवन को हमें सार्थक तौर पे बदलना है, तो उसके लिए हमें किसी भी बात को लेकर झूठ नहीं बोलना है। जो भी बात है साफ साफ बता देनी है। थोड़ी सी डांट तो अवश्य पड़ेगी, क्योंकि गलती होगी, लेकिन उस गलती से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, यह थी हमारे कार्यक्रम की दोनों प्यारी कहानियाँ। आशा करती हूँ कि ये दोनों कहानियाँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। समय हो चला है कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का, तो क्यों ना मैं आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा दूँ। तो आइए बच्चों, सुनते हैं इस गीत को।
1: चिटकी टक

बच्चों, आपको मैं कहना चाहूंगी कि कहानियाँ केवल है ना मनोरंजन का साधन नहीं होती है, बल्कि वे जीवन जीने की सही राह हमें दिखाती है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें ईमानदारी, मेहनत, साहस, दया, आत्मविश्वास और अच्छे संस्कारों का महत्व सिखाती है। कहानियों के पात्रों से हम सभी बच्चे ये सीख पाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय कैसे लिया जा सकता है और अपने सपनों को कैसे पूरा करना है। इसलिए कार्यक्रम बाद नन्हे दिलों की में हम ये प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं, ताकि इन कहानियों के माध्यम से आपके चेहरे पर मुस्कान भी आए और मन में अच्छे विचार भी आए और आप भी एक अच्छे इंसान बने। तो बच्चों, आपको आज कार्यक्रम के माध्यम से जो मैंने दो कहानियाँ सुनाई है वो कैसे लगी, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ बच्चों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया हैं, ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
5: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, किसी भी व्यक्ति की असली पहचान केवल उसके पद या उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपने कर्मों से समाज को क्या दिया है। हर सफलता के पीछे अनेक चुनौतियाँ, सीख और निरंतर प्रयास छिपे होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की जीवन यात्रा हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हां साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम हमारे मेहमान के माध्यम से मिलते हैं उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने कार्य समर्पण और अनुभवों से समाज में एक सकारात्मक पहचान बनाई है। इसी बीच आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच विशेष अतिथि जुड़ने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीमान हेमंत खटीक जी, जो कि साथियों बाल अधिकार विभाग से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की खास बातचीत से साथियों हम जानेंगे उनके जीवन के सफर के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के अनुभवों के बारे में, क्या चुनौतियां उनके सामने आई थी, उपलब्धियां क्या रही और बच्चों के अधिकारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि श्रीमान हेमंत खटीक जी का। सर नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वागड़ रेडियो परिवार में। सर जैसा कि आज आप कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: जी मैडम बिल्कुल, मेरा नाम हेमंत कुमार खटीक है मैडम। मैं वर्तमान में सहायक निदेशक बाल अधिकार विभाग में पदस्थापित हूँ और मैं रहने वाला हूँ उदयपुर का।
0: जी जी।
1: और मैंने मास्टर डिग्री करी की है, MSc किया है और साथ में नेट स्लेट भी है मेरे पास डिग्री। उसके अलावा क्या है, मैंने MA सोशियोलॉजी भी किया है और उसमें भी नेट और स्लेट है मेरा।
0: जी सर, अब यही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, तो इस हिसाब से सर कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किस तरह बीता और किस माहौल में आपने अपना बचपन बिताया है।
1: जी मैडम, बचपन की बात करें तो काफी यादें हैं, उसमें कुछ चुनिंदा यादों और कुछ चुनिंदा स्मरण मैं आपको व्यक्त करना चाहूंगा।
0: जी जी।
1: बचपन मेरा क्या है कि पिताजी इकोनॉमिकली हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिताजी ने अच्छी प्रेरणा दी है। पिताजी का ये था कि जो भी आप काम करते हो बड़ी ईमानदारी से करो, श्रद्धा के साथ करो।
0: जी जी।
1: तो वो प्रेरणा आज भी मेरे जीवन में मैंने कायम कर रखी है। तो पिताजी ने सबसे बड़ी बात है शिक्षा को बहुत महत्व दिया
0: जी।
1: और वो कहते हैं कि शिक्षा एक संजीवनी है, तो आप उस संजीवनी का उपयोग करोगे जीवन हर जगह आप सर्वाइव कर पाओगे।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उस प्रेरणा को देखते हुए फिर मैंने एजुकेशन किया और पापा ने एजुकेशन पे मेरा काफी इन्वेस्ट भी किया। पापा एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट माना करते थे, तो उन्होंने फिर मुझे जो मेरी रुचि के अनुरूप, जैसे मैं साइंस में थोड़ा पारंगत का, MS मेरा अच्छा सब्जेक्ट है प्रिय, तो उसके तहत क्या मैंने 12th में साइंस मैथमेटिक्स लिया था।
0: जी जी।
1: और 12th में मैंने अच्छे मार्क्स आया तो फिर मेरा क्या है कि सिलेक्शन MBE कॉलेज है जो साइंस कॉलेज, उसमें मेरा BSc में हुआ। फिर उसके बाद मेरा इच्छा हुई कि मैं भूगर्भ विज्ञान में यानी जियोलॉजी पे मैं MSc करूँ। फिर उसमें MSc किया मैंने। फिर मैंने एग्जाम भी काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर दिए थे और स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, मैं प्रारंभ में प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में भर्ती हुआ था।
0: जी जी।
1: और फिर मैं, मुझे सबसे बड़ी एक ऊपर वाले की देन है कि मैं अंडर प्रोबेशन में ही मैं DLO का चार्ज रहा था।
0: जी जी।
1: तो मैं क्या राजसमंद से मैंने स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग 12 में हुआ था हमारा। फिर उसके बाद राजसमंद में मेरा काफ़ी अचीवमेंट रहा था, CM साहब की जो 60 दिवसीय कार्य योजना थी उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो पूरे राजस्थान में नंबर 1 परफॉर्मेंस हासिल की थी।
0: जी जी।
1: तो काम की ऊर्जा, चूंकि प्रेरणा बचपन से मिली थी कि जीवन को मैं कार्य को भी हाथ में लो, श्रद्धा और बिल्कुल नैतिक ईमानदारी से लिया करो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी कार्य योजना बनाता था। हालांकि स्टाफ का सब तरह प्रॉब्लम, लेकिन जो समुचित जो राज्य सरकार ने जो स्टाफ दिए उनका बेहतर निष्पादन और संपादन आपको आना चाहिए, तो उसी बेहतर निष्पादन संपादन के आधार पर मैंने अचीवमेंट भी जीवन में प्राप्त किए, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्राइज भी प्राप्त होते रहे समय समय पर। और सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअल में क्या है कि एक अधिकारी जो होता है ना, वो अगर ठान लेता है किसी अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करना तो वो कर सकता है, बस रहते उसका एक मांदा होना चाहिए, एक जज्बात होना चाहिए।
0: जी जी।
1: तो मेरे जज्बात प्रखर थे और मैं किसी चीज को करता था कॉन्फिडेंटली कर पाता था। और सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे हो तो फिर उससे क्या कड़ियां जुड़ती जाती है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ऐसा ही मेरे साथ भी रहा, तो स्टाफ में वर्कर थे जो जुड़े काम किया, और फिर उसके बाद राजसमंद के अलावा फिर मैं बाड़मेर भी रहा, वहाँ मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर स्वास्थ्य जस्टिस में लगाया गया था। वहाँ भी मैंने अच्छा अचीवमेंट किया, एलिंगो द्वारा जो योजना है उनका भी प्रचार प्रसार किया था और बेनिफिटेड किया था। फिर ये आगे नागौर में मेरा ट्रांसफर, वहाँ भी मैंने इस चीज को जारी रखा था। तो केंद्र सरकार की जो योजना है, जो वास्तव में आज भी बहुत सच्चे महरूम है, जैसे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए भी योजना है, उनके चश्मा वगैरह जो भी है ना, छड़ी दिलाना, ये सब कार्य रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके तहत योजना है, उसका संपादन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भारत सरकार के तहत होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है। जो भी जिला था मेरे साथ था, उसके अलावा क्या एलिम्को योजना के तहत भी नागौर में जब मैं था तो बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, कलेक्टर साहब का भी अच्छा सहयोग मिला था।
0: जी जी।
1: तो अच्छा कार्य हुआ है। और फिर पदोन्नति जब मेरी हुई थी, फिर मैं और उत्साह से कार्य करने लगा। राज्य सरकार में ये है कि आप अच्छा करते हो तो यकीनन आपको अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, और सरकारें सब अच्छी होती है, बशर्ते क्या है, सरकार और नियम की जो पारंगत सही तरह से कर सकता है वो वास्तव में सही अधिकारी माना जाता है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो जीवन में बस यही है कि इसी उत्साह से साथ कार्य करूँ, कोशिश यह है कि मेरे कामों से जनता लाभान्वित हो और जनता को एक अच्छे मुकाम पे या अच्छे सहयोग से मैं आगे कार्य कर पाऊँ।
0: बिल्कुल,
1: ये मेरी आगे भी अभिलाषा है।
0: जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आपके सफल जीवन की गाथा के बारे में बताया है,
1: जी जी,
0: यही जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया था कि आप बाल अधिकार को लेकर कार्य कर रहे हैं,
1: जी मैडम,
0: तो यही सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता साथियों को ये बता दीजिए कि बाल अधिकार आखिर होते क्या है और हमारे बच्चों के लिए इन्हें जानना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल, बच्चे राष्ट्र धरोहर होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देते तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी परिपेक्ष में क्या राज्य सरकार समय समय पर और केंद्र सरकार समय समय पर नियम बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो था उसमें भी भारत एक सदस्य देश है, तो उसमें ये था कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सभी का ध्यान रखा जाए।
0: जी जी।
1: और इसी परिपेक्ष में योजनाएं बनाई जाती। तो बाल अधिकार विभाग इसमें नोडल विभाग है डिस्ट्रिक्ट में। तो बाल अधिकार का यही है कि 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे है उन बच्चों को किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, और वो जो अपने पोषण है जैसे मातृत्व लाभ है वो भी प्राप्त कर सके। तो इसी परिसर में सारी इकाइयां बने, जैसे CWC है, JJB है, किशोर न्याय बोर्ड, सारी चीज विधि के अकॉर्डिंग इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इन बच्चों के क्या है कि ये मानना है कि अगर हमारी जनरेशन अगर कमजोर होगी
0: जी जी,
1: तो भविष्य में वो भारत की भागदौड़ या हमारे राष्ट्र की भागदौड़ जैसे है वो संभाल नहीं पाएगी।
0: बिल्कुल।
1: तो बच्चों को सशक्त और बुनियादी रूप से सही शिक्षा देना, उनको स्वस्थ रखना ये बहुत जरूरी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है। कि बच्चा अगर स्वस्थ और सशक्त होगा तभी वो राष्ट्र का बेटर निर्माण कर पाएगा, ये मेरा मानना है और राज्य सरकारों का भी मानना है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर बच्चों का वर्तमान सुरक्षित है तो भविष्य उनका अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो इसी में हम कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि बाल अधिकार को जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल।
0: यही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसे कौन कौन से प्रमुख कानून हैं जिन्हें जानना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो कानून सारा विस्तृत भी है। कुछ कानून ऐसे जो बच्चे जो अपने स्कूल है या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको जानना जरूरी है।
0: जी जी।
1: 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके राइट्स यही है कि जैसे उनको शिक्षा के प्रति ओरिएंटेड किया जाता रहा है।
0: जी जी।
1: अगर कोई शिक्षा से वंचित करता है, क्योंकि ये अपना मौलिक फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो बच्चे को माता पिता का दायित्व है वो शिक्षा प्राप्त करे, ये आर्टिकल 21 में भी समाहित किया गया है। तो बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का भी दायित्व है और प्रशासन का भी, सरकार का भी दायित्व है।
0: जी जी।
1: तो कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहा मेन, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो बच्चा अपना बुद्धि का विकास कर पाएगा, बेहतर समझ हो पाएगी और वो बाल विवाह इस तरह की कुरीतियों से दूर होगा।
0: जी सर, आपने सही कहा। अब यहीं आप हमें ये बताइए कि जैसा कि हम बच्चों के अधिकारों को लेकर बातचीत कर ही रहे हैं और आपके माध्यम से ऐसी ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथी जान पाए हैं, यही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता पिता और समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा में क्या भूमिका निभा सकते हैं।
1: देखो, देखा जाए तो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है, घर होता है, जिसमें माता पिता होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं। तो माता पिता जो मेन बुनियाद रख सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता।
0: जी बिल्कुल।
1: तो माता पिता अगर उसका बायोलॉजिकल बच्चा है या बच्ची है तो यकीनन माता पिता उसको अच्छा सा रखेंगे,
0: जी जी,
1: उसका ख्याल रखेंगे, उसको शिक्षा के प्रति उपयुक्त करेंगे और एक सदाचार की शिक्षा भी देंगे, राष्ट्र प्रेरणा की शिक्षा भी देंगे, जो कि हमारे राष्ट्र को अभी वर्तमान युग के कारण जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जातिवाद है और जहाँ क्या है पंथ निरपेक्षता है, तो इस सब चीजों से दूर रहने के लिए एक बेहतर शिक्षा बच्चों को माँ बाप ही दे सकते हैं।
0: जी सर।
1: उसके अलावा जब जैसे वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा, यानी कि जब वो स्कूल जाने लायक हो जाता है, तब को उसको शिक्षा मिलती है, तो वहाँ टीचर का भी अच्छा होना चाहिए। टीचर जो बिहेव करता है, क्योंकि बच्चे क्या आसपास के व्यवहार और क्रियाकलापों से ही सीखते हैं।
0: जी जी।
1: तो अगर टीचर भी अगर अच्छा है और टीचर भी अच्छी प्रेरणा देगा तो यकीनन बिल्कुल बदलाव आएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे टीचर्स प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। तो उसके अलावा क्या बच्चे के सामाजिक जो समाजीकरण होता है उसमें इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में उनकी संगत होती है, जो उनके साथ जो दोस्त होते हैं वो किस स्तर से किस बैकग्राउंड से है, वो भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि हम साथियों जान ही पा रहे हैं कि बच्चों के लिए बाल अधिकार जो बनाए गए हैं उन्हें जानना उनके लिए बहुत जरूरी है, और उन अधिकारों की रक्षा के लिए माता पिता और समाज ढेर सारी अहम भूमिका निभा पाते हैं। यही सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार पूरी तरह नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप हमें ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं।
1: मैडम, बेसिकली जागरूकता बढ़ाने के लिए जो अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ, जैसे कि सरपंच है, ग्राम पंचायत है, इनके माध्यम से अपन को बेहतर प्रचार प्रसार करना चाहिए।
0: जी जी।
1: और उसके अलावा क्या है कि जिस आशा केंद्र की जो महिलाएं होती है, महिला अधिकारिता के तहत, तो उनको भी मोटिवेट करना चाहिए। हालांकि वो समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करती है।
0: जी जी।
1: उसके अलावा नुक्कड़ नाटक जैसे होकर के अपन भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे CHL है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन है, तो बाल अधिकारिता के अंडर में आती है। उसके तहत भी समय समय पर ये राज्य सरकार के निर्देश और भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कोशिश ये की जाती है कि जागरूकता है और बच्चे अपने अधिकारों को जाने। इसके लिए चूंकि आपके रेडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पल है मेरे लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कोई भी बच्चा 1098 पे कंप्लेंट कर सकता है।
0: जी जी।
1: वो कंप्लेंट से के बाद वो कंप्लेंट जैसे ही प्राप्त होगी, वो चाइल्ड हेल्पलाइन की हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कंप्लेंट आने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है और बच्चों को कोई भी समस्या तो समाधान किया जाता है।
0: जी सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी है, अब यही अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता साथियों को और खासकर हमारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे।
1: मैं उनके ये संदेश देना चाहता हूँ, आप अपने स्तर का कोई कार्य है, जैसे आप जो काम कर, जैसे बच्चों को लालन पालन करना है, पोषण करना है, या बच्चों को शिक्षा देनी है, वो बिल्कुल बेहतर ईमानदारी से करो।
0: जी जी।
1: और इस तरह से करो कि वो राष्ट्र की नई बुनियाद बना पाए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि राष्ट्र सशक्त होगा तो सब सशक्त हो गए।
0: बिल्कुल।
1: तो व्यक्ति की जाति का मजहब का यह कोई मायने नहीं रखता है, उसमें राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी माता पिता है या गुरुजन है, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा उसको देंगे तो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो राष्ट्र का मजबूत निर्माण करती है, साथ ही बच्चों के उन्नत और ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार रहती है।
0: जी जी।
1: तो ऑल ओवर डेवलपमेंट संपूर्ण उसका विकास तभी हो पाएगा जब इस तरह की हम वर्तमान, जैसे हमारे इतिहास में देखा जाए तो बहुत से ऐसे वर्तमान थे जो राष्ट्र प्रेम के पति है, उनका ज्यादा क्योंकि बच्चे के आजकल के जो मूवीज वगैरह बन रही है ना,
0: जी जी,
1: उसमें भड़काव की स्थिति भी रहती है।
0: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं।
1: तो सरकारों को भी जैसे इस तरह से प्रयास करने चाहिए और सभी अपना सक्षम प्रयास करेंगे तो यकीनन हमारे बच्चे जो आने वाला भविष्य है राष्ट्र का, वो एक अच्छा भविष्य का निर्माण भी कर पाएंगे।
0: बिल्कुल सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोता साथियों को दी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, भाकर रेडियो को धन्यवाद।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विशेष अतिथि जुड़े हुए थे और हम कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन परिचय से आपको रूबरू करवा पाए हैं। साथियों, कहा गया है कि हर मुलाकात अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है और हर अनुभव हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण को देखने की प्रेरणा देती है। आज की इस विशेष बातचीत में हमने जाना है साथियों कि समर्पण, संवेदनशीलता और निरंतर प्रयास से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे भी कार्यक्रम के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि याद रखिए साथियों कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा केवल सरकार या किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का नैतिक दायित्व है। ऐसे में हम सभी को मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है साथियों, जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और सम्मानपूर्ण वातावरण में अपना भविष्य संवार सके। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारे मेहमान में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारे मेहमान अब यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम हमारे मेहमान में एक नए विशेष अतिथि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार साथियों।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा की तड़प है, खुद की कमजोरियों को स्वीकार करने का जरिया है। बिना दिल के शब्दों वाली प्रार्थना से कहीं बेहतर है कि बिना शब्दों के दिल से प्रार्थना की जाए। प्रार्थना ही वह शक्ति है साथियों, जो मनुष्य को भीतर से शांत और मजबूत बनाती है। यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमने जाना था सबके गांधी गांधी जी की उपवास प्रकरण के बारे में। उसी प्रकरण को कशिश आगे और भी जाने तो 1932 के यरवड़ा जेल में किए गए उपवास बहुत चर्चित है। गांधी जी के एक सचिव प्यारे लाल ने तो उस उपवास को लेकर एन एम्पिक फर्ट्स नामक पुस्तक भी लिखी थी।
1: जी हाँ,
0: इसके पदचिन्ह योजना के लिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ेगा। द्वितीय गोलमेज परिषद के समय तथा कथित अस्पर्शों के लिए अलग मतदान मंडल विषय पर अच्छी खासी चर्चा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर अलग मतदान मंडल के पक्षधर थे और गांधी जी इसके विरोधी। इस विषय के बारे में वहाँ कोई निर्णय नहीं हो सका। प्रधानमंत्री बाद में इस बारे में अंतिम फैसला घोषित करेंगे, ऐसा कहा गया।
1: बिल्कुल,
0: गांधी जी ने जाते जाते अपने भाषण में यह आशय व्यक्त किया कि यदि अलग मतदान मंडल किया जाएगा तो वह मेरे प्राणों की कीमत पर किया जाएगा। गांधी जी के इस वाक्य के दूसरे कई लोगों की तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने भी शायद अतिशोक्ति अलंकार वाला वाक्य ही समझा होगा।
1: जी
0: पर गांधी जी इस मामले में बहुत गंभीर थे। उन्होंने कशिश सांप्रदायिक फैसले के विरुद्ध आमरण अनशन करने की सूचना सरकार को दी। स्वयं जेल में एक कैदी की तरह थे और बाद में सरकार को पूर्व सूचना दिए बिना ऐसा गंभीर कदम नहीं उठाया जा सकता, ऐसा सोचकर उन्होंने लगभग 6 माह पहले ही चेतावनी दे दी।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही इस विचार के संबंध में उन्होंने जेल के अपने 2 साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल और महादेव भाई के साथ चर्चा भी की थी। सामान्यता दूसरे उपवास के दरमियान होता था, वैसे ही ये उपवास नितांत एकाएक शुरू नहीं हुए।
1: जी हाँ,
0: इतनी लंबी चेतावनी और थोड़े पत्राचार के बाद भी जब गांधी जी ने देखा कि सरकार कौमी फैसले के बारे में जरा सा भी फर्क करने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने उपवास शुरू किए थे।
1: बिल्कुल,
0: कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि दलितों का हमेशा पक्ष लेने वाले गांधी जी उनको अलग मताधिकार मिलने का विरोध करने के लिए आमरण उपवास करने की हद क्यों कर गए हों।

0: स्कैंडल तो आखिरकार देश के टुकड़े करने तक ले गया था।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे टुकड़े अस्पृश्यों के निमित्त भी हो, क्या ऐसा कोई राष्ट्रप्रेमी चाहेगा? ये प्रश्न है साथियों। मुस्लिमों की आबादी का एक काफी बड़ा भाग भौगोलिक दृष्टि से जिस तरह देश के उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में बसा हुआ था, उनके लिए उन भागों को देश से अलग किया गया।
1: जी जी,
0: दलित तो हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिखरे हुए थे, क्या उनके लिए लाखों दलिस्तान बनाने संभव थे? ऐसा कोई अलगाववादी आंदोलन चला होता तो लाखों गांव में फैले अल्पसंख्यक गरीब अधिकांश अशिक्षित और अल्प शिक्षित दलितों की क्या हालत होती?
1: बिल्कुल,
0: एक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से बाबा साहेब अंबेडकर का नाम जोड़ने के मुद्दे पर हुई हिंसा के कारण मराठवाड़ा में कितने सारे दलित मोहल्ले आग में भस्म हुए थे। ये तथ्य जानने वाले लोग आसानी से समझ सकेंगे कि ऐसी मांग के कारण कैसी हिंसा फूट पड़ती है और उसमें दलित ही मारे जाएंगे, इस बात का गांधी जी को अंदाजा था। अंजलि जी,
2: बिल्कुल कशिश, उपवास के प्रारंभ के समय डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को साफ दिल से बात कह दी थी कि इस मामले से दलितों को मिलने वाले अधिकारों को यदि छोड़ना है तो इसके बदले में उन्हें जो संतोषप्रद लगे ऐसा कुछ और करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम तो जन्म से दलित हो पर मैं अपनी इच्छा से दलित हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी दलितों के हित के लिए लड़ने को तैयार हूँ। केंद्रीय धारा सभा में दलितों को कितना प्रतिनिधित्व मिले इस बाबत जब पूना में इकट्ठे दलित गैर दलित नेताओं में चर्चा परिचर्चा शुरू हुई तब अंत में अंबेडकर जितनी सीटों पर समाधान करने को तैयार हुए थे उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सीटें दलितों को मिलनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का आग्रह था। गांधी जी के इस आग्रह के आधार पर दलितों को सीटें मिली थी। उपवास के समय तो गांधी जी को डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ तक कहा कि आप जितना मुझे समझते हैं उतना आपके साथी मुझे नहीं समझते।
0: बिल्कुल,
2: ना समझौते पर हस्ताक्षर हुए, अंग्रेज सरकार ने उस समझौते के मुताबिक अपने फैसले में संशोधन किए। उनके तत्काल बाद हुई एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात जो वे नहीं समझे थे उसके बारे में कहा था कि गांधी जी ने उपवास के बाद जो समाधान किया था उतना गोलमेज परिषद में क्यों नहीं किया? यदि उन्होंने वैसा किया होता तो उपवास द्वारा उन्होंने जो कष्ट भोगा वह उन्हें भोगना नहीं पड़ता। यहाँ हमें गांधी जी के उपवास द्वारा सृजित वातावरण पर विचार करना चाहिए। इंग्लैंड में जब इस बाबत चर्चाएं चल रही थी तब वे मात्र एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार द्वारा चुन चुन कर बुलाए गए प्रतिनिधियों के बीच की चर्चा परिचर्चा थी। पूना में चल रही थी स्वर्ण हिंदू और दलितों के बीच, जहाँ विभाजन को उत्तेजित करने वाले अंग्रेज थे, यहाँ गांधी जी के उपवास कितनी जल्दी समाप्त हो इसकी चिंता करने वाले हिंदी थे। गांधी जी के उपवास ने अस्पृश्यता के प्रश्न बाबत पूरे देश का ध्यान एकाग्र किया था। गांधी जी के इस उपवास ने कशिश स्वर्ण हिंदुओं में अस्पृश्यता के पाप बाबत जितना स्वयं को दोषानुभव का भाव और दलितों में अपने न्यायोचित अधिकारों के बारे में जागरूकता का भाव पैदा हुआ था उतना शायद ही दूसरी किसी घटना की वजह से पैदा हुआ होगा।
0: जी हाँ,
2: गोलमेज परिषद के समय गांधी जी ने यह समाधान किया होता तो इसके पीछे उनके उपवास द्वारा पैदा किया गया नैतिकता के वातावरण का समर्थन नहीं होता।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं उपवास प्रकरण को लेकर, ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: जी।

0: स्थान से आने वाले शरणार्थियों के समूह कभी भी उपद्रव कर डाले, ऐसा वहाँ वातावरण था। पाकिस्तान की कराची में उस समय फूटे हुए हिंसा के प्रत्युत्तर में दिल्ली में हिंसा की लहर आएगी, ऐसा भय था।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे श्रोता साथियों से कर रहे थे, सबके गांधी प्रकरण में गांधी जी के उपवास को लेकर, ये बातें हमारी अगले रविवार को भी श्रोता साथियों से जरूर होंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई। नमस्कार श्रोता साथियों, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से आपसे बातचीत के लिए एक नई व्यंजन विधि लेकर आते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ढेर सारे फायदे भी देती है और पौष्टिक भी होती है। और साथ ही हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताते हैं कि आपको उसे बनाने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी और किस विधि को आप अपना कर सही तरीके से घर पर ही उस व्यंजन को बना सकते हैं। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से साथियों एक ऐसे ही नई व्यंजन विधि को लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो बातें ढेर सारी करेंगे साथियों आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए दोस्तों हम पहले एक प्यारा सा गीत यहाँ पर सुन ले। जी बिल्कुल, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम एक नई व्यंजन विधि को लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि हमारे बीच बातचीत की रहने वाली है वो है कच्चे केले की पौष्टिक टिक्की। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेकर आते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की पौष्टिक टिक्की। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कच्चे केले लगभग हर मौसम में मिल ही जाते हैं। ये सस्ते भी होते हैं और पोषण से भरपूर भी। यदि साथियों इन्हें सही तरीके से बनाया जाए तो ये बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिए एक अच्छा नाश्ता बन सकता है। तो आइए श्रोता साथियों, अब यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, यानी कि सामग्री के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको साथियों चाहिए होंगे 3 मध्यम आकार के कच्चे केले, उसके साथ ही 2 उबले हुए मध्यम आकार के आलू। श्रोता साथियों, ये आप विकल्प के रूप में ले सकते हैं क्योंकि टिक्की को बनाने के लिए हमें आलू की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप आलू उबले हुए इस्तेमाल में लें। 2 से 3 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन और ओट्स का पाउडर भी आप लें श्रोता साथियों। 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ यहाँ पर चाहिए। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई आप ले लीजिए। 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक जो कि कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया ले लीजिए श्रोता साथियों। 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी श्रोता साथियों, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आप यहाँ पर लेंगे। वो आप अपनी इच्छा के अनुसार भी ले सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग कम तीखा खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में श्रोता साथियों, आप लाल मिर्च पाउडर अपने इच्छा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार इस्तेमाल में यहाँ पर ले सकते हैं। इसी के आगे बताऊं तो 1/2 छोटा चम्मच हमें गरम मसाला भी उपयोग में लेना है। स्वाद अनुसार हम नमक का उपयोग करेंगे साथियों, साथ ही 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, और अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसी के बाद श्रोता साथियों, 2 से 3 छोटे चम्मच तेल आपको चाहिए होंगे जिसका उपयोग श्रोता साथियों आप टिक्कियों को हल्का सेकने के लिए करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अगर आपने सामग्री नहीं लिखी है तो मैं आपको फिर से सामग्री बताना चाहूंगी। जी हाँ साथियों, आपको 3 मध्यम आकार के कच्चे केले लेने हैं, 2 उबले हुए मध्यम आकार के आलू लेने हैं क्योंकि आलू का इस्तेमाल हम टिक्की को बांधने के लिए करेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन या ओट्स का पाउडर हम लेंगे, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ लेंगे, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा टुकड़ा अदरक जो कि कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो कि आप अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस, 2-3 छोटे चम्मच तेल टिक्की को सेकने के लिए हम उपयोग में लेंगे साथियों। तो इस तरीके से हम इन सभी सामग्रियों को श्रोता साथियों इस्तेमाल में लेंगे। तो श्रोता साथियों, ये तो हमारी सामग्री यहाँ पर पूरी हो गई। तो अब आप इन सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए श्रोता साथियों, क्योंकि आगे कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस व्यंजन को बनाने के लिए हम क्या विधि अपनाएंगे। तो विधि के बारे में जरूर जानेंगे श्रोता साथियों, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई की ओर। जैसा कि साथियों गीत से पहले हम केले की टिक्की बनाने की सामग्रियों को इकट्ठा कर चुके थे और जान चुके थे श्रोता साथियों कि क्या क्या सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इस स्वादिष्ट और पौष्टिक टिक्की को बनाने की। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले कच्चे केले को अच्छी तरह धो लेना है ताकि उन पर लगी मिट्टी या धूल साफ हो जाए। अब एक बर्तन या प्रेशर कुकर में पानी डालें, उन केलों को दोस्तों उनके छिलके सहित उबाल लें। यदि कुकर का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 2 से 3 सीटी पर्याप्त रहती है। केले बहुत अधिक नहीं गलने चाहिए साथियों, इस बात का आप ध्यान रखें, वरना जो पेस्ट बनकर रेडी होगा वो बहुत ज्यादा गीला होगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि केले को आपको बहुत अधिक गलने नहीं देना है। जब केले ठंडे हो जाएं साथियों तब उनका छिलका उतार दें आप और अच्छी तरह उन्हें मसल लें यानी कि मेश कर दें। यदि आप आलू का उपयोग कर रहे हैं तो उबले आलू को भी मेश करके इसमें मिला दें। दोस्तों आलू डालने से टिक्की आसानी से बनती है, इसलिए मैंने आपको सामग्री में कहा था कि अगर आप आलू का उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आप केवल केले की टिक्की बनाना चाहते हैं तो आलू को आप स्किप भी कर सकते हैं यानी कि छोड़ भी सकते हैं। अब इस मिश्रण में आप बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो कि आप अपनी इच्छा के अनुसार डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक और अमचूर या नींबू का रस आप डालें साथियों। इन सभी सामग्रियों को हाथों से अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाले हर हिस्से में समान रूप से मिल जाएं। यदि श्रोता साथियों आपको वो जो पेस्ट या मिश्रण बनकर तैयार हुआ है वो थोड़ा ढीला लग रहा है तो उसमें आप भुना हुआ बेसन या ओट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी टिक्की जो है वो थोड़ी कुरकुरी बनेगी और टूटेगी भी नहीं। अब आगे साथियों आपको क्या करना है कि हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर मिश्रण की बराबर बराबर लोइया आप बना लीजिए। उन्हें हल्का चपटा करके टिक्की का आकार देंगे आप। अब एक मोटे तले वाला जो तवा होता है या फिर आपके पास अगर नॉनस्टिक तवा है साथियों तो उसे आप गर्म करें। तवे पर थोड़ा सा तेल लगाएं और जो आपने टिक्कियां बनकर तैयार की है उन्हें तवे पर रखें और धीमी मध्यम आंच पर उन्हें पकाते रहें श्रोता साथियों। अब आप देखेंगे कि जब वह एक तरफ से सुनहरी हो जाती है तो आप उन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेकेंगे। याद रखिए श्रोता साथियों, अगर आप उन्हें जल्दी जल्दी पलटेंगे तो टिक्की टूट भी सकती है, इसलिए धैर्य रखें और उन्हें अच्छी तरह से पकने दें। दोनों तरफ से सुनहरी और हल्की कुरकुरी होने पर श्रोता साथियों टिक्कियां बनकर तैयार हो जाएंगी। इसे हरी धनिया या फिर पुदीने की चटनी, दही या घर की बनी टमाटर की चटनी के साथ आप परोस सकते हैं। ये खाने में श्रोता साथियों आपको काफी स्वादिष्ट लगेगी। तो ये तो दोस्तों हमारी केले की टिक्की बनकर तैयार हो गई। अब आगे कार्यक्रम में कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं जो मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई की ओर। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले हमारी कच्चे केले की टिक्की बनकर तैयार तो हो गई थी, यही कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, स्वाद और सेहत का सबसे अच्छा मेल घर के बने भोजन में ही मिलता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को रोज एक जैसा नाश्ता न देकर सप्ताह में एक दो दिन ऐसी पौष्टिक रेसिपियां जरूर बनाएं। अपने घर के बुजुर्गों से भी श्रोता साथियों, आप पारंपरिक व्यंजन बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें स्वाद के साथ साथ अनुभव और स्वास्थ्य भी छिपा हुआ होता है। साथ ही मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों का भी आप अधिक उपयोग करें, इससे श्रोता साथियों, भोजन ताजा भी रहेगा और खर्च भी कम होगा। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि भोजन के साथ पर्याप्त पानी पीने, नियमित व्यायाम करने और संतुलित जीवन शैली अपनाने की आदत भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो सिर्फ स्वास्थ्यप्रद खाना खाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अच्छी जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है श्रोता साथियों। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने श्रोता साथियों, कच्चे केले की पौष्टिक टिक्की बनाने की आसान स्वादिष्ट विधि को समझा। उम्मीद है श्रोता साथियों कि आप इसे अपने घर में जरूर बनाएंगे और पूरे परिवार के साथ इसका आनंद लेंगे। यदि आपके पास भी दोस्तों कोई पारंपरिक स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी है तो आप हमें अवश्य भेजिए, क्योंकि हो सकता है साथियों कि अगली बार आपकी रेसिपी दादी माँ की रसोई का हिस्सा बने। इसलिए आप अपने अनुभव और अपनी इस पारंपरिक व्यंजन विधि हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे श्रोता साथियों, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नए स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, एकता अखंडता संप्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूँ, पंथ निरपेक्षता का सच्चा पथ तुमको बतलाता हूँ, उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत कर में लाया हूँ, इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज पढ़ाता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बातचीत रही थी महात्मा गांधी और भारतीय संविधान को लेकर। इसमें हमने जाना था कि किस तरीके से संविधान को लेकर गांधी जी की अवधारणा थी। इसमें हमने और भी आगे जाना कि ओध का संविधान और गांधी किस तरीके से रहा और गांधी जी का राम राज्य क्या था। यहीं आज हम बात करते हैं कि कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी।
1: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि, अगर कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी, इसको लेकर हम बात करें तो दस्तावेज से यही पता चलता है कि गांधी जी दुनिया के दूसरे देशों या पश्चिमी देशों की व्यवस्था को सिर माथे पर बिठाकर भारत का संविधान बनाने के विचार पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कभी अपने विचारों को थोपा नहीं। वे अपनी बातों और विचारों को समय समय पर अभिव्यक्त करते गए। शायद उन्हें एहसास था कि जो संविधान बनेगा वह उनके मन का संविधान नहीं होगा। उनका आग्रह यही था कि हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए जिसके केंद्र में समाज और गांव हो, न कि राज्य व्यवस्थाएं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, उन्होंने कहा था कि भारत ने दुनिया के सामने एक बेहतर संविधान प्रस्तुत किया है, किंतु यह भी सच है कि यह महात्मा गांधी के आदर्शों के संविधान से पूरा मेल नहीं खाता। गांधी जी भारत में पंचायत व्यवस्था की स्थापना चाहते थे और भारत के अधिकतर तत्कालीन नेता और नीति निर्माता इससे सहमत नहीं थे, लेकिन यह भी सच है कि इस संविधान ने मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों और अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर बहुत तार्किक विकल्प प्रस्तुत किए थे।
1: जी हाँ, इसी के साथ साथियों, अगर लोकतंत्र की बात करें तो यह एक मान्य तथ्य है कि केंद्रीकृत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से चलने वाला लोकतंत्र कोई अच्छा लोकतंत्र नहीं होगा। गांधीवादी संविधान में सन 1945 में लिख दिया गया था कि वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में धन की ताकत के घातक उपयोग के साथ ही चुनावों की व्यवस्था भी बेहद दोषपूर्ण और अनुपयुक्त है। बड़े निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं और उम्मीदवारों के बीच न तो कोई संवाद होने देते हैं, न ही कोई रिश्ता कायम होने देते हैं। जिसे हम जानते नहीं उसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। षड्यंत्रों और मिथ्या प्रचारों के बीच लोग नैतिक अनैतिक का फैसला कर पाने में असक्षम हो जाते हैं। इस विषय में गांधी जी कहते हैं, हम लोकतंत्र की नहीं भीड़ तंत्र की स्थापना करते हैं। सुसभ्य सक्षम और शालीन व्यक्ति चुनाव हार जाता है और बेईमानी, मोटी चमड़ी वाले लोग हथियार और भ्रष्टाचार के बल पर जीते हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। गांधी जी का स्पष्ट विचार भी था इस पर कि भारत में लोकतंत्र होगा पर यह एक केंद्रीकृत लोकतंत्र नहीं होगा, बल्कि भारत के 7 लाख गांवों में से प्रत्येक में एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। हर गांव की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था होगी। उनकी यह सोच कतई नहीं रही कि जाति

0: व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, स्त्रियों को दोयम दर्जे की नागरिकता जैसी अमानवीय व्यवस्थाएं और व्यवहार के साथ लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: वे भारतीय समाज के इस चरित्र को बदलकर लोकतंत्र की स्थापना करने का ख्वाब देख रहे थे।
1: बिल्कुल अंजलि, और संसदीय व्यवस्था यानी कि गांधी जी की दृष्टि में देखे संसदीय व्यवस्था को, तो गांधी जी भारत में ऐसी संसदीय व्यवस्था की उम्मीद कर रहे थे जो भारतीय व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गांव से शुरू होकर केंद्र तक आती है। वे इस बात से कतई सहमत नहीं थे कि भारत के लोकतंत्र में व्यवस्था केंद्र से शुरू हो और गाँवों तक जाए। साथियों, हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा, अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो, ऐसा नहीं लगता। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दे, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की जरूरत हम क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि उनके चले जाने के बाद भी उनका बनाया विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। वास्तव में हमें अंग्रेजी राज तो चाहिए, पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। कहा जाता है अंजलि कि अंग्रेजों की संसद अन्य संसदों की माता है, किंतु मुझे नहीं लगता कि उस पार्लियामेंट ने एक भी अच्छा काम किया हो तब तक उस पर कोई दबाव न हो और वह कुछ काम नहीं करती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, उन्होंने कहा कि बात बहुत स्पष्ट है कि संसद के सदस्यों का समाज से इतना गहरा जुड़ाव और संवाद होना चाहिए कि किसी को अपना दुख कहने की जरूरत ही न पड़े और संसद पहल कर दे। ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि लोगों को झुंड में तब्दील होना पड़े और संसद को अपनी बात सुनाने के लिए चीखना और चिल्लाना पड़े। लेकिन इसके उलट इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के सदस्य दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं सिर्फ डर के कारण कि संसद कुछ काम करती है। बड़े सवालों पर चर्चा के समय उनके सदस्य पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उनके सदस्य इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनका दृढ़ विचार था कि केंद्रीकृत लोकतंत्र से व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ताकतवर बनता है और ताकत उन्हें पद भ्रष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में ऐसा भी केंद्रीकृत लोकतंत्र प्रभावी हो सकता है जिसमें लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो और वे भारत के लोगों को उदासीन मतदाता के रूप में परिवर्तित होते नहीं देखना चाहते थे।
1: तो अंजलि, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमारी बातें बहुत ही अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, हमें जाना था कैसी व्यवस्था चाहते हैं गांधी जी, लोकतंत्र के बारे में जाना था, संसदीय व्यवस्था के बारे में जाना था। इसी के साथ जानते हैं गांधी जी और मौलिक अधिकारों के बारे में। तो अंजलि, महात्मा गांधी जी मानते थे कि मौलिक अधिकार जीवन के मूल आधार होते हैं। जब व्यक्ति को मूलभूत अधिकार मिलेंगे तभी वह समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: साथियों, भारत दमन, शोषण, सांप्रदायिक हिंसा, जातिवाद, भेदभाव, गरीबी और उपेक्षा की परिस्थितियों में आजाद हुआ, उस दौर में नागरिकों की उम्मीद जगाने के लिए उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा जरूरी थी।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अगर यही बात करें, गांधीवादी संविधान में मूलभूत अधिकार वाले अध्याय में दर्ज है, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे और जाति, वर्ण, पंथ, लिंग, धर्म या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इन आधारों पर वे रोजगार, लोक सामान्य व्यापार और वाणिज्य में किसी भी किस्म की अक्षमता का सामना नहीं करेंगे। अहिंसा और सार्वजनिक लोक नैतिकता के अधीन हर नागरिक को अपनी बात कहने, संगठन बनाने और संवाद करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही लोक व्यवस्था और नैतिकता के सिद्धांतों के अधीन हर नागरिक को अपनी निजी और सामाजिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता भी होगी। सभी नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सहेजने और विकसित करने की आजादी होगी। सभी नागरिकों को कुओं, तालाबों, मार्गों, विद्यालयों, स्थानीय निकायों या राज्य या निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी होगी। हर नागरिक को निःशुल्क बुनियादी शिक्षा हासिल करने का अधिकार होगा। श्रोता साथियों, और हर नागरिक को हिंसा या विपरीत परिस्थितियों में पुलिस का संरक्षण पाने, अपने ईमानदार काम के एवज में जीवन यापन के लिए न्यूनतम वेतन पाने, स्वास्थ्य सेवाएं पाने, मतदान करने का अधिकार भी होगा।
0: जी हाँ बिल्कुल। और अंजलि, जैसा कि गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य को लेकर हम बात करें, तो महात्मा गांधी जी कर्तव्य को अधिकारों की बराबरी में रखते थे। वह कहते थे कि जब कर्तव्य निभाए जाएंगे तो अधिकार भी मिलेंगे, अगर कर्तव्य नहीं निभाए जाएंगे तो अधिकार मिलना संभव नहीं है। कर्तव्यों के मामले में वे इन बातों से सहमत थे कि हर नागरिक राज्य के प्रति निष्ठा रखेगा, खास तौर पर राष्ट्रीय आपदाओं और विदेशी आक्रमण के समय हर नागरिक लोक कल्याण के विस्तार के लिए राज्य निधि में नगद सामग्री या श्रम के रूप में योगदान करेगा। हर नागरिक के निरीक्षण करेगा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति के द्वारा शोषण न किया जाए, और यदि वह शोषण देखता है तो उसका विरोध करेगा।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी कि गांधी जी का संविधान अधिकार और समानता के बारे में। श्रोता साथियों, गांधी जी कहते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्य का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। हर आदमी को जीवन की आवश्यकताएं पूरा करने का समान अधिकार है।
0: जी हाँ।
1: यही अधिकार पशुओं और पक्षियों के लिए भी है। और चूंकि प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है श्रोता साथियों, और उस अधिकार पर कहीं से कोई आक्रमण हुआ हो तो उसका वैसा इलाज भी है। इसलिए हमारी समस्या यह है कि हम उस प्रारंभिक बुनियादी समानता को सिद्ध करने के लिए उस समानता के अधिकार से जुड़े हुए कर्तव्यों और इलाज ढूंढ निकालें। वह कर्तव्य है कि हम मेहनत करें, और वह इलाज यह है कि जो हमें मेहनत के फल से वंचित करे उसके साथ हम असहयोग करें।
0: जी हाँ साथियों, यही संविधान में शामिल गांधीवादी सिद्धांत को लेकर हम बात करें तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व कई कारणों से विशिष्ट माने जाते हैं। अंजलि, संविधान के भाग 4 में शामिल 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद 36-51 तक इसके 4 संशोधन राज्य को निर्देशित करते हैं कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को इस तरह अपनाए और क्रियान्वित करें ताकि एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। दिलचस्प बात यह है कि इन नीति निदेशक तत्वों में कई ऐसे हैं जो गांधी द्वारा देश के समग्र विकास के लिए प्रकट विचारों से मेल खाते हैं। अनुच्छेद 39 जहां आजीविका और संसाधनों पर समान अधिकार की बात करता है तथा संपत्ति एकत्रित करने को हतोत्साहित करता है, वहीं अनुच्छेद 43 और 43B कुटीर उद्योग और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। साथियों, अनुच्छेद 46 कमजोर तबकों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों को रोकने वाली नीतियों की वकालत करता है। अनुच्छेद 48 गोवध तथा दुधारू पशुओं को मारे जाने पर रोक लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। इनमें सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के क्रियान्वयन की बात करता है। ये सभी विचार गांधीवादी सिद्धांतों के करीब है। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों में भी गांधी जी का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। भेदभाव के खिलाफ प्रावधान अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना अनुच्छेद 25 तथा अल्पसंख्यकों के हितों का बचाव करना अनुच्छेद 29, 30 ऐसे ही प्रावधान है।
1: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम आज हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं कि किस तरीके से गांधी जी संविधान की व्यवस्था चाहते थे और उनकी दृष्टि में संविधान क्या था, और इसी के साथ हमने जाना कि गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य क्या थे, इसी में हमने जाना अधिकार और समानता के बारे में। अगले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी। इसमें हम जानेंगे कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी।
0: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सांभुनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरू इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
2: तो हमरो बोनू, अरे सब समस्या नो समाधान आपे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
2: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है, और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: होता का ऋचाकृति बोल आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थई जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है होवे जागृति पूर्ण हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है होवे अंजलि पूर्ण आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति पूर्ण आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितनी शांति मिले है जिमी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
1: होवे आज नाना ना कदम है ई अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, जहां मन भय से मुक्त हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां मानवता सबसे बड़ा धर्म हो, वहीं सच्चे राष्ट्र का निर्माण होता है। महापुरुष केवल इतिहास के पन्नों में नहीं रहते, उनके विचार हर पीढ़ी को नई दिशा देते हैं।

किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर एक नए महापुरुष के जीवन परिचय के साथ में। जागृति जी, आज इस विशेष कार्यक्रम में हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार, शिक्षाविद और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ ठाकुर को। श्रोता साथियों, हर वर्ष 7 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। यह दिन केवल उन्हें याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके विचारों, शिक्षा के प्रति उनकी सोच और मानवता के संदेश को समझाने का भी दिन है।
0: बिल्कुल,
1: रविंद्रनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उन्हें केवल एक कवि कहना उनके योगदान को छोटा कर देना होगा। उन्होंने साहित्य, संगीत, शिक्षा, कला और समाज सुधार के क्षेत्र में ऐसे कार्य किए हैं जिनका प्रभाव आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि महान व्यक्ति वही होते हैं जो अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में हमारे श्रोता साथियों को हम बता रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया था कि 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरा सांको ठाकुर बाड़ी में एक प्रतिष्ठित एवं समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक चिंतन थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। परिवार का वातावरण साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति से परिपूर्ण था, जिसका गहरा प्रभाव बालक रविंद्रनाथ पर पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही प्राप्त की थी। श्रोताओं, पारंपरिक विद्यालयों का कठोर वातावरण पसंद नहीं था, इसलिए उनके लिए घर पर ही कई विषयों के विद्वानों की व्यवस्था की गई थी।
1: जी जी।
0: उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, संगीत और चित्रकला का अध्ययन किया।
1: बिल्कुल जागृति जी, कम उम्र में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी रचनाओं में प्रकृति की सुंदरता, मानव जीवन की संवेदनाएं और प्रेम का अद्भुत चित्रण मिलता था। श्रोता साथियों, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और गीत जैसी अनेक विधाओं में लेखन किए हैं। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें आज रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि ने जागृति जी उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई। वर्ष 1913 में उन्हें इसी कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई साहित्यकार बने। उनकी लेखनी में केवल शब्द नहीं थे श्रोता साथियों, बल्कि मानवता, प्रेम, करुणा और जीवन के गहरे दर्शन समाये हुए थे।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हमने बताया था कि उन्हें कई विषयों का ज्ञान था। सन 1878 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहाँ की औपचारिक शिक्षा उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकी। वे बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर जी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। किशोरावस्था में उनकी कविताएं और कहानियां प्रकाशित होने लगी। धीरे धीरे वे बंगला साहित्य के प्रमुख लेखक बन गए। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, गीत और यात्रा वृतांत सहित लगभग हर साहित्यिक विधा में उत्कृष्ट रचनाएं की।
1: बिल्कुल,
0: उनकी भाषा श्रोताओं सरल थी, भावपूर्ण थी और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी।
1: बिल्कुल जागृति जी, रविंद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि शिक्षा बच्चों के मन पर बोझ नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास का माध्यम होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। यहाँ विद्यार्थियों को खुले वातावरण में प्रकृति के बीच सीखने का अवसर दिया जाता था।
0: जी हाँ।
1: वे चाहते थे कि शिक्षा बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों का विकास करे। आज की नई शिक्षा नीति में भी अनुभव आधारित शिक्षा, रचनात्मकता और समग्र विकास पर जो जोर दिया जाता है, उसकी झलक रविंद्रनाथ ठाकुर के विचार में बहुत पहले दिखाई देती थी। कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे राष्ट्रभक्त थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद मानवता से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे श्रोता साथियों कि देश से प्रेम का अर्थ केवल सीमाओं से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के लोगों, संस्कृति, प्रकृति और मूल्यों का सम्मान करना भी था।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला लिखा था। यह विश्व इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है। उनका संदेश था कि दुनिया तब सुंदर बनेगी जब लोग एक दूसरे के धर्म, भाषा और संस्कृति का सम्मान करेंगे।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के जीवन परिचय से हम अवगत करवा रहे हैं, तो ये बातें हम और भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन परिचय को लेकर, हमने जाना था साहित्यिक जीवन की शुरुआत को लेकर, साथ में उनकी शिक्षा को लेकर, जन्म एवं परिवार को लेकर। यहीं अगर उनकी रचनाओं के बारे में हमारे श्रोता साथियों को अंजलि हम बताएं तो रविंद्रनाथ ठाकुर का साहित्य अत्यंत विशाल और बहुआयामी था। उनकी रचनाएं गीतांजलि, गोरा, घरे बेरे, डाकघर, रक्त कर्पी, राजा, मानसी, चोखेर बाली, योगा योग, नौका डूबी, उन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें आज रविंद्र संगीत के नाम से भी जाना जाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आज जब समय तेजी से बदल रहा है तब उनके विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे हमें सिखाते हैं कि आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति को भी संजो कर रखना चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार, विज्ञान के साथ संवेदनशीलता और विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है श्रोता साथियों कि हम पढ़ने की आदत विकसित करें, अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करें, समाज में प्रेम, शांति और भाईचारे का वातावरण बनाएं। कहना चाहेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जागृति जी जब वह मानवता के काम आए।
0: जी हाँ,
1: उन्होंने अपने विचारों से लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाया, शिक्षा को नई दिशा दी और साहित्य को समाज सुधार का सशक्त माध्यम बनाया। उनकी पुण्यतिथि पर श्रोता साथियों हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में शिक्षा, संवेदनशीलता, ईमानदारी और मानवता के मूल्यों को अपनाएंगे। हम अपने बच्चों को केवल डिग्री नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देंगे।
0: जी हाँ,
1: पुस्तकों से मित्रता करेंगे, प्रकृति से प्रेम करेंगे और समाज में प्रेम, शांति और सहयोग की भावना को मजबूत बनाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर की अमर कृति गीतांजलि ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई थी। इस काव्य संग्रह के अंग्रेजी अनुवाद ने पश्चिमी देशों में और अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की। वर्ष 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई साहित्यकार बने थे।
1: जी जी,
0: इस उपलब्धि ने भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई थी। श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहते हुए भी भारत की स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थे। वे महात्मा गांधी जी का सम्मान करते थे और उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, लेकिन अंजलि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये सम्मान लौटा दिया। उनका ये कदम भारतीय स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है।
1: जी हाँ जागृति जी, रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन हमें ये एहसास कराता है कि एक सच्चा इंसान वही है जो अपने ज्ञान, प्रतिभा और संवेदनशीलता का उपयोग केवल अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए करता है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र, साहित्य, शिक्षा, संगीत, कला और सामाजिक चिंतन में यह सिद्ध किया कि विचारों की शक्ति किसी भी परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव होती है। इसी के साथ जागृति जी, रविंद्रनाथ ठाकुर का संदेश हमें बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि विवेक, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास करना है।
0: बिल्कुल,
1: जब शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ते हैं तब समाज में विश्वास बढ़ता है। जब साहित्य के साथ संवेदना जुड़ती है श्रोता साथियों तब लोगों के दिल बदलते हैं और जब ज्ञान के साथ विनम्रता जुड़ती है तब एक मजबूत और मानवीय राष्ट्र का निर्माण होता है।
0: बिल्कुल अंजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर का व्यक्तित्व बहुत ही सरल, विनम्र और संवेदनशील, साथ ही मानवीय भी था। वे जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता की बात करते थे। वे प्रकृति प्रेमी थे और मानते थे कि मनुष्य का विकास प्रकृति के साथ जुड़कर ही संभव है।
1: जी जी,
0: उनका दर्शन प्रेम, शांति, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। उन्होंने जीवन भर अंधविश्वास, संकीर्णता और भेदभाव का विरोध किया। श्रोताओं, 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में इस महान विभूति का निधन हो गया। उनका शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो गया लेकिन उनकी रचनाएं, विचार और आदर्श आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करती है। उनके विचार हमें बताते हैं कि यदि हम सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सत्य भी बाहर रह जाएगा।
1: जी हाँ जागृति जी, महापुरुषों की सबसे बड़ी विरासत उनकी संपत्ति नहीं बल्कि उनके विचार होते हैं। जो व्यक्ति सीखना, सोचना और दूसरों के लिए जीना नहीं छोड़ता वही सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीता है।
0: बिल्कुल,
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन से हमें ये सीखने को मिला कि हम ज्ञान को अपना प्रकाश बनाएं, मानवता को अपना धर्म बनाएं, सेवा को अपना जीवन का उद्देश्य बनाएं।
0: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को बस यही कहना चाहेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर केवल एक महान कवि नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के अमर प्रतीक थे। उन्होंने अपने साहित्य, संगीत, शिक्षा और मानवीय मूल्यों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची महानता पद, प्रतिष्ठा या पुरस्कार में नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए किए गए कार्यों में होती है।
1: बिल्कुल।
0: आज भी उनकी रचनाएं नई पीढ़ी को संवेदनशील, सृजनशील और राष्ट्र प्रेमी बनने की प्रेरणा देती है। इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जीवन और उनका साहित्य सदैव अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत बना रहेगा।
1: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में हमने बहुत अच्छी तरीके से रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन परिचय से श्रोता साथियों को अवगत कराया है, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाखरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है, माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो, एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ श्रोता साथी इस कार्यक्रम के माध्यम से, उस कहानी का शीर्षक है दोस्ती का महत्व, जो कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। साथियों, मित्रता वो रिश्ता है जिसे न खून का संबंध चाहिए और न ही किसी स्वार्थ का सहारा। ये केवल विश्वास, प्रेम, सम्मान और अपनत्व की मजबूत नींव पर टिका होता है। हम मनुष्य हैं और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम अकेले न तो अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और न ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में परिवार हमें जन्म से मिलता है दोस्तों, लेकिन मित्र हम स्वयं चुनते हैं। यही कारण है कि सच्चा मित्र हमारे जीवन का सबसे अनमोल उपहार माना जाता है। दोस्ती केवल साथ घूमने फिरने, हंसी मजाक का नाम नहीं दोस्तों, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने, सही मार्ग दिखाने और जीवन को बेहतर बनाने का नाम है। तो आज मैं आपको दोस्ती के महत्व को लेकर एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, और उस कहानी का शीर्षक है दोस्ती का महत्व, जो कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है इस तरह से। एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था निखिल। निखिल पढ़ाई में बहुत

अच्छा था, मेहनती था और अपने सपनों को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी था। दोस्तों वो हमेशा कहता था कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सके। लेकिन उसकी एक कमी थी दोस्तों, वो किसी से अधिक खुलता मिलता नहीं था। उसे लगता था कि दोस्ती समय की बर्बादी है। वो अपने काम से काम रखता और अकेले ही स्कूल जाता, अकेले लौटता, अकेले पढ़ता। गांव के बच्चे कई बार उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते श्रोताओं, लेकिन वो हर बार मना कर देता था। उसी विद्यालय में एक विवेक नाम का लड़का था। विवेक स्वभाव से बहुत ही हसमुख था, सहयोगी और मिलनसार था। वो हर किसी की मदद करता था दोस्तों, सबके साथ सम्मान से पेश आता। उसने कई बार निखिल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन निखिल हमेशा विनम्रता से कह देता कि मुझे दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। विवेक मुस्कुरा देता और कहता, कोई बात नहीं, कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर करना। इसी तरह साथियों समय बीतता गया। एक दिन विद्यालय में विज्ञान की प्रदर्शनी की घोषणा हो गई। सभी विद्यार्थियों को समूह बनाकर मॉडल तैयार करना था। निखिल ने सोचा कि वो अकेले ही सब कर लेगा, उसने किसी को अपने साथ नहीं लिया। दूसरी ओर विवेक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी श्रोताओं बांट ली। कोई चित्र बना रहा था, कोई सामग्री जुटा रहा था, तो कोई मॉडल तैयार कर रहा था। काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी तरह श्रोता साथियों, निखिल दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन प्रदर्शनी के ठीक दो दिन पहले उसका मॉडल गलती से टूट गया। उसकी सारी मेहनत एक पल में बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि अकेले चलना हमेशा आसान नहीं होता है। उसी समय विवेक वहां पहुंचा। उसने टूटा हुआ मॉडल देखा और बिना कुछ कहे अपने साथियों को बुला लिया। चलो दोस्तों, पहले निखिल का मॉडल ठीक करते हैं, उसने कहा अपने दोस्तों से। सबने मिलकर देर रात तक काम किया। किसी ने गोंद लगाई, किसी ने रंग किया, किसी ने नई नई सामग्रियां जुटाई। कुछ ही घंटों में साथियों मॉडल पहले से भी बेहतर बन चुका था। निखिल एकदम हैरान था। उसने धीरे से पूछा, मैंने तो कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? विवेक मुस्कुराया और बोला, दोस्ती कोई सौदा नहीं है दोस्त। सच्चा दोस्त ये नहीं देखता कि सामने वाले ने उसके लिए क्या किया है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। ये शब्द निखिल के दिल को छू गए। अगले दिन प्रदर्शनी हुई। निखिल और विवेक के संयुक्त प्रयास की सबने सराहना की। दोनों को विशेष पुरस्कार भी मिले दोस्तों। पुरस्कार से अधिक खुशी निखिल को इस बात की थी कि उसे एक सच्चा मित्र मिल गया था। उस दिन के बाद निखिल बदल गया। अब वो दूसरों की मदद करने लगा था। किसी को पढ़ाई में परेशानी होती तो वो समझाता, कोई उदास होता तो उसका हौसला बढ़ाता। कुछ वर्षों बाद दोनों ने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ भी उनकी दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई। कॉलेज के अंतिम वर्ष में दोनों ने मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करने का निश्चय किया। शुरुआत आसान नहीं थी दोस्तों, पैसे कम थे, अनुभव कम था और चुनौतियाँ भी बहुत सारी थी। एक समय ऐसा आया जब उनका व्यवसाय घाटे में चला गया। निखिल एकदम परेशान होकर बोला, शायद हमें काम बंद कर देना पड़ेगा। तभी विवेक ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, जब हम स्कूल में टूटे हुए मॉडल को मिलकर बना सकते हैं तो अपनी जिंदगी को क्यों नहीं संभाल सकते हैं? हार मानना समाधान नहीं है। इन शब्दों ने निखिल के अंदर नई ऊर्जा भर दी दोस्तों। दोनों ने फिर से मेहनत शुरू की, गलतियों से सीखा, नई नई योजनाएं बनाई और धीरे धीरे उनका काम सफल होने लगा। कुछ वर्षों बाद उनका छोटा सा व्यवसाय एक बड़ी संस्था में बदल गया। जब उनसे सफलता का रहस्य पूछा गया तो निखिल ने मुस्कुरा कर कहा कि हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी दोस्ती है। अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन सच्चे दोस्त के साथ इंसान बहुत दूर तक पहुंच सकता है। उनकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग भावुक हो गए। एक दिन गांव के विद्यालय ने उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। दोस्तों निखिल ने बच्चों से कहा, मैं पहले सोचता था कि दोस्ती समय की बर्बादी है, लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया कि सच्चा मित्र वो शक्ति है जो गिरने पर उठाता है, हारने पर हिम्मत देता है और सफलता मिलने पर सबसे ज्यादा खुश भी वही होता है। विवेक ने आगे कहा, दोस्त वही नहीं जो हर दिन साथ बैठे, सच्चा दोस्त तो वो है जो आपके अच्छे संस्कारों को मजबूत करे, आपकी गलतियों पर आपको रोके और आपके सपनों को अपना समझकर साथ चले। श्रोताओं, पूरा विद्यालय तालियों से गूंज उठा उनकी बातों से। उस दिन बच्चों ने एक संकल्प लिया कि वे केवल दोस्त नहीं बनाएंगे बल्कि अच्छे और सच्चे दोस्त बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी कहानी, और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन की राह में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन हर कोई मित्र नहीं बनता। सच्चा मित्र तो वही है जो हमारे आंसुओं की भाषा समझे, हमारी चुप्पी को पढ़ ले और बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाए।
मित्रता केवल साथ घूमने फिरने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने का नाम है। इसलिए जीवन में अच्छे मित्र चुनिए, स्वयं भी एक अच्छे मित्र बनिए और हर रिश्ते में विश्वास, सम्मान और अपनापन बनाइए। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक का बैलेंस नहीं है, बल्कि ऐसे मित्र है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। यही दोस्ती का वास्तविक महत्व है और यही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा भी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दोस्ती के महत्व को लेकर। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं दोस्ती से भरे इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और मैंने आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी और हमने बहुत प्यारा सा गीत भी सुना। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगी दोस्तों कि आज लोग डिजिटल दुनिया में बहुत समय बिताने लगे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के साथ साथ एक दूसरे को दूर भी कर दिया है। और ऐसे समय में साथियों, सच्ची मित्रता का महत्व और बढ़ जाता है। हमें ऐसे मित्र बनाने होंगे जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करें, हमें अच्छे संस्कार दे और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाए। इसी के साथ साथियों, कहानी हमें ये सिखाती है कि मित्रता केवल साथ बिताए गए समय का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, सहयोग और निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। सच्चा मित्र हमारी सफलता पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है दोस्तों, और हमारी असफलता में सबसे पहले हमारा हाथ पकड़ता है। एक अच्छा मित्र हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, वो हमारी कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने में मदद करता है। मित्र हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और कठिन परिस्थितियों में हमें हिम्मत भी देते हैं। सच्ची मित्रता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं साथियों, लेकिन एक सच्चा मित्र जीवन भर हमारा साथ निभाता है। मित्रता हमें प्रेम करना सिखाती है, सहयोग करना सिखाती है, त्याग और विश्वास का वास्तविक अर्थ हमें सिखाती है। यदि जीवन में एक सच्चा मित्र मिल जाए तो समझिए श्रोताओं की हमने सबसे अनमोल संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हम केवल अच्छे मित्र खोजेंगे नहीं, बल्कि स्वयं भी ऐसे मित्र बनेंगे जो दूसरों के जीवन में आशा, विश्वास और प्रेरणा का प्रकाश फैलाए। क्योंकि सच्ची दोस्ती ही वो शक्ति है जो साधारण जीवन को भी असाधारण बना देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और उम्मीद भी करती हूँ कि कहानी और कुछ जो बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, पर जाने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी ताकि आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी बागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार साथी, आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात्कालिक जीवन जीवन।

0: उपयुक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
2: नाना अंजलि बोन हूँ था का
1: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा खेतर मंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि पुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति पुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर नई प्रेरणादायी कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी हम हर रविवार को हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से नई और प्रेरणादायक कहानी आपको सुनाते हैं। तो आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से कहानी आपको अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला यह गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले बताया था कि आज भी मैं कहानी को लेकर हाजिर हुई हूँ, तो आज हमारी कहानी का पहला विषय है दादी की खाली गुल्लक। जी हाँ बच्चों, एक गांव में आरव नाम का 11 साल का लड़का रहता था। उसकी दादी के कमरे में मिट्टी की एक पुरानी गुल्लक रखी थी। आश्चर्य की बात यह है बच्चों कि दादी उसमें कभी पैसे नहीं डालती थी, फिर भी हर शाम उसे हाथ जोड़कर अलमारी में रख देती थी। एक दिन आरव से रहा नहीं गया, उसने पूछा, दादी इसमें पैसे तो है ही नहीं, फिर आप इसे इतना संभाल कर क्यों रखती हो। दादी मुस्कुराई और बोली, बच्चों कि इसमें पैसे नहीं, मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन दादी उसे अपने साथ गांव ले गई। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। घर लौटकर दादी ने गुल्लक को हल्के से हिलाया और बोली, आज इसमें एक सिक्का और जुड़ गया। बच्चों आरव फिर से हैरान था। दूसरे दिन दादी ने एक गरीब बच्चे को पुरानी किताबें दे दी, फिर वही बात, आज गुल्लक और भर गई। तीसरे दिन उन्होंने घायल चिड़िया को पानी पिलाया। चौथे दिन किसी उदास पड़ोसी के घर बैठकर उसका मन हल्का किया। हर अच्छे काम के बाद दादी कहती, एक और सिक्का जुड़ गया। आरव बच्चों अब भी उलझन में था। कुछ महीनों बाद दादी बहुत बीमार पड़ गई। पूरे गांव के लोग उनके घर आने लगे, कोई दवा लेकर आया, कोई खाना, तो कोई रात भर सेवा करने बैठा। आरव ने पहली बार देखा कि जिन लोगों की दादी ने कभी मदद की थी वे आज बिना बुलाए उनके साथ खड़े थे। उस रात दादी ने गुल्लक आरव के हाथ में देकर कहा, अब इसे खोल कर देखो। आरव ने गुल्लक तोड़ी, अंदर एक भी रुपया नहीं था, बस एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, जिसने जीवन भर केवल पैसे जोड़े वह अमीर कहलाया, लेकिन जिसने लोगों का विश्वास, प्यार, दुआएं जोड़ी, वही सचमुच सबसे धनी बना। बच्चों आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने भी अपने कमरे में खाली गुल्लक रखी। फर्क सिर्फ इतना था कि जब भी वह कोई अच्छा काम करता, एक छोटी सी पर्ची पर उसे लिखकर गुल्लक में डाल देता। सालों बाद जब उसने गुल्लक खोली तो उसमें सैकड़ों पर्चियां थी, किसी की मदद करने की, पेड़ लगाने की, दोस्त का साथ देने की, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने की। उसे समझ में आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई बैंक नहीं, लोगों के दिलों में जमा होती है। तो बच्चों ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में पैसा, खिलौने, कपड़े, बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, वो एक दिन पुरानी हो जाती है, लेकिन अच्छे कर्म कभी पुराने नहीं होते। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं बच्चों, तब हम अपने जीवन की ऐसी पूंजी जमा करते हैं जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अक्सर हम भी अपने माता पिता से हर चीज को लेकर जिद करते रहते हैं, उनके पास हो नहीं हो ये नहीं देखते। कोई बच्चा हमारे घर पर मेहमान भी आया है तो भी हम उसे अपने खिलौने देना पसंद नहीं करते। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप किसी बच्चे को अपना खिलौना खेलने के लिए देंगे या कोई ऐसी चीज है जो उसे खुशी देगी, तो वो ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो आशा करती हूँ बच्चों की प्यारी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक और प्यारी सी कहानी अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हम सभी एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन कर ले। तो आइए बच्चों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद अब मैं आपको अगली कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी का विषय है कि जिस दिन पूरे गांव ने झूठ बोला। जी हाँ बच्चों, एक गांव था जहाँ लोग अपने बच्चे को हमेशा सिखाते थे कि सच बोलना सबसे बड़ी बात है। लेकिन बच्चों को लगता था कि एक छोटा सा झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है। फिर क्या हुआ, एक दिन गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग शिक्षक ने बच्चों को बिना बताए एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने गांव के हर बड़े व्यक्ति से कहा कि कल पूरे दिन बच्चों से केवल झूठ बोलना और शाम को मैं कारण बताऊंगा। अगले दिन अजीब घटना होने लगी। माँ ने कहा कि आज खाना मत खाना, इससे ताकत कम होगी। पिता बोले कि पढ़ाई करने से कोई सफल नहीं होता। दुकानदार ने बोला कि खराब सामान सबसे अच्छा है। डॉक्टर ने मजाक में कहा कि दवा मत लेना, बीमारी अपने आप बढ़ेगी। बच्चों, सब बच्चे घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि किसकी बात सही है। शाम को सभी गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। शिक्षक ने बच्चों से पूछा, आज कैसा लगा? एक बच्चे ने कहा कि पूरा दिन डर लगा, किसी पर भरोसा ही नहीं हुआ हमें। दूसरे ने कहा कि अगर सब झूठ बोलने लगे तो दुनिया चल ही नहीं सकती। तब शिक्षक बोले कि यही कारण है कि एक छोटा सा झूठ भी केवल एक बात नहीं बिगाड़ता, बल्कि बच्चों, लोगों का भरोसा तोड़ देता है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है, उस दिन रिश्ते भी टूटने लगते हैं। उस दिन के बाद से गांव में एक नया नियम बना, गलती करने वाले को माफ किया जाएगा, लेकिन झूठ बोलकर गलती छिपाने वाले को कभी नहीं। धीरे धीरे वह गांव आसपास के इलाकों में विश्वास वाला गांव कहलाने लगा। तो बच्चों, ये प्यारी सी कहानी हमें सीख देती है कि सच बोलना केवल अच्छी आदत नहीं होती है, बल्कि हर रिश्ते की नींव होती है। धन, ज्ञान, सफलता दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक बार खोया हुआ विश्वास बहुत मुश्किल से लौटता है। इसलिए गलती हो जाए बच्चों, तो उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो कठिन परिस्थिति में भी सच नहीं छोड़ता। क्योंकि चरित्र की पहचान हमारी बातों से नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई से होती है। क्योंकि बच्चों, बहुत सी बार हम भी यही सोचते हैं, इतनी सी तो बात है, मम्मी पापा से झूठ बोल लेंगे, टीचर से झूठ बोल लेंगे, लेकिन यही इतनी सी बात कल को हमारे जीवन को बदल सकती है। इसलिए अगर हमारे जीवन को हमें सार्थक तौर पर बदलना है, तो उसके लिए हमें किसी भी बात को लेकर झूठ नहीं बोलना है। जो भी बात है साफ साफ बता देनी है। थोड़ी सी डांट तो अवश्य पड़ेगी, क्योंकि गलती होगी, लेकिन उस गलती से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, यह थी हमारे कार्यक्रम की दोनों प्यारी कहानियाँ। आशा करती हूँ कि ये दोनों कहानियाँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। समय हो चला है कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का, तो क्यों ना मैं आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा दूँ। तो आइए बच्चों, सुनते हैं इस गीत को। चित्तकिता

बच्चों, आपको मैं कहना चाहूंगी कि कहानियाँ केवल है ना मनोरंजन का साधन नहीं होती है, बल्कि वे जीवन जीने की सही राह हमें दिखाती है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें ईमानदारी, मेहनत, साहस, दया, आत्मविश्वास और अच्छे संस्कारों का महत्व सिखाती है। कहानियों के पात्रों से हम सभी बच्चे ये सीख पाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय कैसे लिया जा सकता है और अपने सपनों को कैसे पूरा करना है। इसलिए कार्यक्रम बाद नन्हे दिलों की में हम ये प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते हैं, ताकि इन कहानियों के माध्यम से आपके चेहरे पर मुस्कान भी आए और मन में अच्छे विचार भी आए और आप भी एक अच्छे इंसान बने। तो बच्चों, आपको आज कार्यक्रम के माध्यम से जो मैंने दो कहानियाँ सुनाई है वो कैसे लगी, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ बच्चों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, किसी भी व्यक्ति की असली पहचान केवल उसके पद या उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपने कर्मों से समाज को क्या दिया है। हर सफलता के पीछे अनेक चुनौतियाँ, सीख और निरंतर प्रयास छिपे होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की जीवन यात्रा हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वीकार कीजिएगा साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हां साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम हमारे मेहमान के माध्यम से मिलते हैं उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपने कार्य समर्पण और अनुभवों से समाज में एक सकारात्मक पहचान बनाई है। इसी बीच आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच विशेष अतिथि जुड़ने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीमान हेमंत खटीक जी, जो कि साथियों बाल अधिकार विभाग से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की खास बातचीत से साथियों हम जानेंगे उनके जीवन के सफर के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के अनुभवों के बारे में, क्या चुनौतियां उनके सामने आई थी, उपलब्धियां क्या रही और बच्चों के अधिकारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि श्रीमान हेमंत खटीक जी का। सर नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वागड़ रेडियो परिवार में। सर जैसा कि आज आप कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहेंगे।
1: जी मैडम बिल्कुल, मेरा नाम हेमंत कुमार खटीक है मैडम। मैं वर्तमान में सहायक निदेशक बाल अधिकार विभाग में पदस्थापित हूँ और मैं रहने वाला हूँ उदयपुर का।
0: जी जी।
1: और मैंने मास्टर डिग्री करी की है, MSc किया है और साथ में नेट सेट भी है मेरे पास
0: जी।
1: उसके अलावा क्या है, मैंने MA सोशियोलॉजी भी किया है और उसमें भी नेट और सेट है मेरा।
0: जी सर, अब यही हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बचपन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, तो इस हिसाब से सर कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन किस तरह बीता और किस माहौल में आपने अपना बचपन बिताया है।
1: जी मैडम, बचपन की बात करें तो काफी यादें हैं, उसमें कुछ चुनिंदा यादों और कुछ चुनिंदा स्मरण मैं आपको व्यक्त करना चाहूँगा।
0: जी जी।
1: बचपन मेरा क्या है कि पिताजी इकोनॉमिकली हमारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिताजी ने अच्छी प्रेरणा दी है। पिताजी का ये था कि जो भी आप काम करते हो बड़ी ईमानदारी से करो, श्रद्धा के साथ करो।
0: जी जी।
1: तो वो प्रेरणा आज भी मेरे जीवन में मैंने कायम कर रखी है। तो पिताजी ने सबसे बड़ी बात है शिक्षा को बहुत महत्व दिया
0: जी।
1: और वो कहते हैं कि शिक्षा एक संजीवनी है, तो आप उस संजीवनी का उपयोग करोगे जीवन में हर जगह आप सर्वाइव कर पाओगे।
0: बिल्कुल।
1: तो वो उस प्रेरणा को देखते हुए फिर मैंने एजुकेशन किया और पापा ने एजुकेशन पे मेरा काफी इन्वेस्ट भी किया।
0: जी,
1: पापा
0: जी।
1: एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट माना करते थे, तो उन्होंने फिर मुझे जो मेरी रुचि के अनुरूप, जैसे मैं साइंस में थोड़ा पारंगत था, MS मेरा अच्छा सब्जेक्ट है प्रिय, तो उसके तहत क्या मैंने 12th में साइंस मैथमेटिक्स लिया था।
0: जी जी।
1: और 12th में मैंने अच्छे मार्क्स आया तो फिर मेरा क्या है कि सिलेक्शन MBA कॉलेज है जो साइंस कॉलेज, उसमें मेरा BSc में हुआ। फिर उसके बाद मेरा इच्छा हुई कि मैं भूगर्भ विज्ञान में यानी जियोलॉजी पे मैं MSc करूँ। फिर उसमें MSc किया मैंने। फिर मैंने एग्जाम भी काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकतर दिए थे और स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर, मैं प्रारंभ में प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में भर्ती हुआ था।
0: जी जी।
1: और फिर मैं, मुझे सबसे बड़ी एक ऊपर वाले की देन है कि मैं अंडर प्रोबेशन में ही मैं DLO का चार्ज रहा था।
0: जी जी।
1: तो मैं क्या राजसमंद से मैंने स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग 12 में हुआ था हमारा। फिर उसके बाद राजसमंद में मेरा काफ़ी अचीवमेंट रहा था, CM साहब की जो 60 दिवसीय कार्य योजना थी उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो पूरे राजस्थान में नंबर 1 परफॉर्मेंस हासिल की थी।
0: जी जी।
1: तो काम की ऊर्जा, चूंकि प्रेरणा बचपन से मिली थी कि जीवन को मैं कार्य को भी हाथ में लो, श्रद्धा और बिल्कुल नैतिक ईमानदारी से लिया करो, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी कार्य योजना बनाता था। हालांकि स्टाफ का सब तरह प्रॉब्लम हो, लेकिन जो समुचित जो राज्य सरकार ने जो स्टाफ दिए उनका बेहतर निष्पादन और संपादन आपको आना चाहिए, तो उसी बेहतर निष्पादन संपादन के आधार पर मैंने अचीवमेंट भी जीवन में प्राप्त किया।
0: जी जी।
1: जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्राइज भी प्राप्त होते रहे समय समय पर। और सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअल में क्या है कि एक अधिकारी जो होता है ना, वो अगर ठान लेता है किसी अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करना तो वो कर सकता है, बस करते है उसका एक मानदा होना चाहिए, एक जज्बात होना चाहिए।
0: जी जी।
1: तो मेरे जज्बात प्रखर थे और मैं किसी चीज को करता था कॉन्फिडेंटली कर पाता था। और सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे हो तो फिर उससे क्या कड़ियां जुड़ती जाती है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ऐसा ही मेरे साथ भी रहा, तो स्टाफ में वर्कर थे जो जुड़े काम किया और फिर उसके बाद आश्रम के अलावा फिर मैं बाड़मेर भी रहा, वहाँ मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल जस्टिस लगाया गया था, वहाँ भी मेरा अच्छा अचीवमेंट किया एलिंगो द्वारा, जो योजना है उनका भी प्रचार प्रसार किया था वो बेनिफिटेड किया था। फिर ये आगे नागौर में मेरा ट्रांसफर, वहाँ भी मैंने इस चीज़ को जारी रखा था। तो केंद्र सरकार की जो योजना है, जो वास्तव में आज भी बहुत से महरूम है, जैसे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए भी योजना है, उनके चश्मा वगैरह जो भी है ना, छड़ी दिलाना, ये सब कार्य रहता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके तहत योजना है, उसका संपादन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भारत सरकार के तहत होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है। जो भी जिला था मेरे साथ था, उसके अलावा क्या एलिंको योजना के तहत भी नागौर में जब मैं था तो बहुत अच्छा अचीवमेंट किया, कलेक्टर साहब का भी अच्छा सहयोग मिला था।
0: जी जी।
1: तो अच्छा कार्य हुआ है। और फिर पदोन्नति जब मेरी हुई थी, फिर मैं और उत्साह से कार्य करने लगा। राज्य सरकार में ये है कि आप अच्छा करते हो तो यकीनन आपको अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, और सरकारें सब अच्छी होती है, बशर्ते क्या है, सरकार और नियम की जो पारंगत सही कतरे से कर सकता है वो वास्तव में सही अधिकारी माना जाता है।
0: बिल्कुल सर।
1: तो जीवन में बस यही है कि इसी उत्साह से साथ कार्य करूँ, कोशिश ये है कि मेरे कामों से जनता लाभान्वित हो और जनता को एक अच्छे मुकाम पे या अच्छे सहयोग से मैं आगे कार्य कर पाऊँ, ये मेरी आगे भी अभिलाषा है।
0: जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोता साथियों को आपके सफल जीवन की गाथा के बारे में बताया है,
1: जी जी,
0: यही जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया था कि आप बाल अधिकार को लेकर कार्य कर रहे हैं,
1: जी मैडम,
0: तो यही सर मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता साथियों को ये बता दीजिए कि बाल अधिकार आखिर होते क्या है और हमारे बच्चों के लिए इन्हें जानना क्यों जरूरी है।

0: बच्चे राष्ट्र धरोहर होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देते तो वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी परिपेक्ष में क्या राज्य सरकार समय समय पर और केंद्र सरकार समय समय पर नियम बनाती है?
1: बिल्कुल,
0: यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो था उसमें भी भारत एक सदस्य देश है, तो उसमें ये था कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सभी का ध्यान रखा जाए।
1: जी जी।
0: और इसी परिपेक्ष में योजनाएं बनाई जाती। तो बाल अधिकारिता विभाग इसमें नोडल विभाग है डिस्ट्रिक्ट में। तो बाल अधिकारिता का यही है कि 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उन बच्चों को किसी प्रकार पहचान ना हो
1: जी।
0: और वो जो अपने पोषण है जैसे मातृत्व लाभ है वो भी प्राप्त कर सके। तो इसी परिस में सारी इकाई बने जैसे CWC है, JJB है, किशोर न्याय बोर्ड, सारी चीज विधि के अकॉर्डिंग इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इन बच्चों के क्या है कि ये मानना है कि अगर हमारी जनरेशन अगर कमजोर होगी
1: जी जी
0: तो भविष्य में वो भारत की भागदौड़ या हमारे राष्ट्र की भागदौड़ जैसे है वो संभाल नहीं पाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो बच्चों को सशक्त और बुनियादी रूप से सही शिक्षा देना, उनको स्वस्थ रखना ये बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जो हमारे आने वाली पीढ़ी है कि बच्चा अगर स्वस्थ और सशक्त होगा तभी वो राष्ट्र का बेटर निर्माण कर पाएगा, ये मेरा मानना है और राज्य सरकारों का भी मानना है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर बच्चों का वर्तमान सुरक्षित है तो भविष्य उनका अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो इसी में हम कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि बाल अधिकार को जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल।
1: यही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसे कौन कौन से प्रमुख कानून हैं जिन्हें जानना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो कानून सारे विस्तृत भी है। कुछ कानून ऐसे जो बच्चे जो अपने स्कूल है या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको जानना जरूरी है। जीरो से अठारह वर्ष के जो बच्चे हैं उनके राइट्स यही है कि जैसे उनको शिक्षा के प्रति ओरिएंटेड किया जाता रहा है।
1: जी जी।
0: अगर कोई शिक्षा से वंचित करता है, क्योंकि ये अपना मौलिक फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तो बच्चे को माता पिता का दायित्व है वो शिक्षा प्राप्त करे, ये आर्टिकल 21 क में भी समाहित किया गया है। तो बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का भी दायित्व है और प्रशासन का भी, सरकार का भी दायित्व है।
1: जी जी।
0: तो कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, क्योंकि शिक्षा मिलेगी तो बच्चा अपना बुद्धि का विकास कर पाएगा, बेहतर समझ हो पाएगी और वो बाल विवाह इस तरह की कुरीतियों से दूर होगा।
1: जी सर, आपने सही कहा। अब यहीं आप हमें ये बताइए कि जैसा कि हम बच्चों के अधिकारों को लेकर बातचीत कर ही रहे हैं और आपके माध्यम से ऐसी ढेर सारी बातें हमारे श्रोता साथी जान पाए हैं, यहीं हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता पिता और समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा में क्या भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखो, देखा जाए तो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होता है, घर होता है, जिसमें माता पिता होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं। तो माता पिता जो मेन बुनियाद रख सकते हैं उसके अलावा कोई नहीं रख सकता।
1: जी बिल्कुल।
0: तो माता पिता अगर उसका बायोलॉजिकल बच्चा है या बच्ची है तो यकीनन माता पिता उसको अच्छा से रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसको शिक्षा के प्रति उपयुक्त करेंगे और एक सदाचार की शिक्षा भी देंगे, राष्ट्र प्रेरणा की शिक्षा भी देंगे, जो कि हमारे राष्ट्र को अभी वर्तमान युग के कारण जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: जातिवाद है और जहाँ क्या है पंथ निरपेक्षता है, तो इस सब चीजों से दूर रखने के लिए एक बेहतर शिक्षा बच्चों को माँ बाप ही दे सकते हैं।
1: जी सर।
0: उसके अलावा जब जैसे वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा, यानी कि जब वो स्कूल जाने लायक हो जाता है तब उसको शिक्षा मिलती है, तो वहाँ टीचर का भी अच्छा होना चाहिए। टीचर जो बिहेव करता है, क्योंकि बच्चे क्या आसपास के व्यवहार और क्रियाकलापों से ही सीखते हैं।
1: जी जी।
0: तो अगर टीचर भी अगर अच्छा है और टीचर भी अच्छी प्रेरणा देगा तो यकीनन बिल्कुल बदलाव आएंगे।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे टीचर्स प्रयास भी कर रहे हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। तो उसके अलावा क्या बच्चे की सामाजिक जो समाजीकरण होता है उसमें इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में उनकी संगत होती है, जो उनके साथ जो दोस्त होते हैं वो किस स्तर से किस बैकग्राउंड से है, वो भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि हम साथियों जान ही पा रहे हैं कि बच्चों के लिए बाल अधिकार जो बनाए गए हैं उन्हें जानना उनके लिए बहुत जरूरी है और उन अधिकारों की रक्षा के लिए माता पिता और समाज ढेर सारी अहम भूमिका निभा पाते हैं। यही सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार पूरी तरह नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप हमें ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं?
0: मैडम, बेसिकली जागरूकता बढ़ाने के लिए जो अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ, जैसे कि सरपंच है, ग्राम पंचायत है, इनके माध्यम से अपन को बेहतर प्रचार प्रसार करना चाहिए।
1: जी जी।
0: और उसके अलावा क्या है कि जिस आशा केंद्र की जो महिलाएं होती है महिला अधिकारिता के तहत, तो उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, हालांकि वो समय समय पर इस तरह की कार्रवाई करती है।
1: जी जी।
0: उसके अलावा नुक्कड़ नाटक जैसे होकर के अपन भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे CHL है तो चाइल्ड हेल्पलाइन है जो बाल अधिकारिता के अंडर में आती है, उसके तहत भी समय समय पर ये राज्य सरकार के निर्देश और भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कोशिश ये की जाती है कि जागरूकता है और बच्चे अपने अधिकारों को जाने, इसके लिए चूंकि आपके रेडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पल है मेरे लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, कोई भी बच्चा 1098 पे कंप्लेंट कर सकता है।
1: जी जी।
0: वो कंप्लेंट से के बाद वो कंप्लेंट जैसे ही प्राप्त होगी, वो चाइल्ड हेल्पलाइन की हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कंप्लेंट आने के बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है और बच्चों को कोई भी समस्या तो समाधान किया जाता है।
1: जी सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी हो चुकी है, अब यही अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोता साथियों को और खासकर हमारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं उनके ये संदेश देना चाहता हूँ, आप अपने स्तर का कोई कार्य है, जैसे आप जो काम कर, जैसे बच्चों को लालन पालन करना है, पोषण करना है या बच्चों को शिक्षा देनी है, वो बिल्कुल बेहतर ईमानदारी से करो।
1: जी जी।
0: और इस तरह से करो कि वो राष्ट्र की नई बुनियाद बना पाए।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि राष्ट्र सशक्त होगा तो सब सशक्त हो गए।
1: बिल्कुल।
0: तो व्यक्ति की जाति का मजहब का यह कोई मायने नहीं रखता है, उसमें राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी माता पिता है या गुरुजन है, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा उसको देंगे तो राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो राष्ट्र का मजबूत निर्माण करती है, साथ ही बच्चों के उन्नत और ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार रहती है। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट संपूर्ण उसका विकास तभी हो पाएगा जब इस तरह की हम वर्तमान, जैसे हमारे इतिहास में देखा जाए तो बहुत से ऐसे वर्तमान थे जो राष्ट्र प्रेम के पति है, उनका ज्यादा ज्यादा, क्योंकि बच्चे के आजकल के जो मूवीज वगैरह बन रही है ना, उसमें भड़काव की स्थिति भी रहती है।
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं।
0: तो सरकारों को भी जैसे इस तरह से प्रयास करने चाहिए और सभी अपना सक्षम प्रयास करेंगे तो यकीनन हमारे बच्चे जो आने वाला भविष्य है राष्ट्र का, वो एक अच्छा भविष्य का निर्माण भी कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोता साथियों को दी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, वागर रेडियो को धन्यवाद।
1: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विशेष अतिथि जुड़े हुए थे और हम कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन परिचय से आपको रूबरू करवा पाए हैं। साथियों, कहा गया है कि हर मुलाकात अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है और हर अनुभव हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण को देखने की प्रेरणा देती है। आज की इस विशेष बातचीत में हमने जाना है साथियों कि समर्पण, संवेदनशीलता और निरंतर प्रयास से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपसे भी कार्यक्रम के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि याद रखिए साथियों कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा केवल सरकार या किसी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का नैतिक दायित्व है। ऐसे में हम सभी को मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है साथियों, जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो और सम्मानपूर्ण वातावरण में अपना भविष्य संवार सके। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दोस्तों, विदा मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारे मेहमान में।

हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम हमारे मेहमान में एक नए विशेष अतिथि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार साथियों।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा की तड़प है। खुद की कमजोरियों को स्वीकार करने का जरिया है। बिना दिल के शब्दों वाली प्रार्थना से कहीं बेहतर है कि बिना शब्दों के दिल से प्रार्थना की जाए। प्रार्थना ही वह शक्ति है साथियों, जो मनुष्य को भीतर से शांत और मजबूत बनाती है। यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए थे।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में।
1: जी हाँ।
0: जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमने जाना था सबके गांधी गांधी जी की उपवास प्रकरण के बारे में। उसी प्रकरण को कशिश आगे और भी जाने तो 1932 के यरवड़ा जेल में किए गए उपवास बहुत चर्चित है। गांधी जी के एक सचिव प्यारे लाल ने तो उस उपवास को लेकर एन एम्पिक फर्ड्स नामक पुस्तक भी लिखी थी।
1: जी हाँ।
0: इसके पद चिन्ह योजना के लिए हमें इंग्लैंड जाना पड़ेगा। द्वितीय गोलमेज परिषद के समय तथा कथित अस्पर्शों के लिए अलग मतदान मंडल विषय पर अच्छी खासी चर्चा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर अलग मतदान मंडल के पक्षधर थे और गांधी जी इसके विरोधी। इस विषय के बारे में वहाँ कोई निर्णय नहीं हो सका। प्रधानमंत्री बाद में इस बारे में अंतिम फैसला घोषित करेंगे, ऐसा कहा गया।
1: बिल्कुल।
0: गांधी जी ने जाते जाते अपने भाषण में यह आशय व्यक्त किया कि यदि अलग मतदान मंडल किया जाएगा तो वह मेरे प्राणों की कीमत पर किया जाएगा। गांधी जी के इस वाक्य के दूसरे कई लोगों की तरह ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्स मैकडोनाल्ड ने भी शायद अतिशोक्ति अलंकार वाला वाक्य ही समझा होगा।
1: जी
0: पर गांधी जी इस मामले में बहुत गंभीर थे। उन्होंने कशिश सांप्रदायिक फैसले के विरुद्ध आमरण अनशन करने की सूचना सरकार को दी। स्वयं जेल में एक कैदी की तरह थे और बाद में सरकार को पूर्व सूचना दिए बिना ऐसा गंभीर कदम नहीं उठाया जा सकता, ऐसा सोचकर उन्होंने लगभग 6 माह पहले ही चेतावनी दे दी।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इस विचार के संबंध में उन्होंने जेल के अपने 2 साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल और महादेव भाई के साथ चर्चा भी की थी। सामान्यतः दूसरे उपवास के दरमियान होता था, वैसे ही ये उपवास नितांत एकाएक शुरू नहीं हुए।
1: जी हाँ।
0: इतनी लंबी चेतावनी और थोड़े पत्राचार के बाद भी जब गांधी जी ने देखा कि सरकार कौमी फैसले के बारे में जरा सा भी फर्क करने को तैयार नहीं है, तब उन्होंने उपवास शुरू किए थे।
1: बिल्कुल।
0: कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि दलितों का हमेशा पक्ष लेने वाले गांधी जी उनको अलग मताधिकार मिलने का विरोध करने के लिए आमरण उपवास करने की हद क्यों कर गए होंगे। गांधी जी ने एकाधिक बार इस बारे में सफाई दी थी।
1: बिल्कुल अंजलि जी। श्रोता साथियों, किसी एक समूह को इस प्रकार का विशेष अधिकार देना यानी कि उसे हमेशा के लिए उसी समूह में रखने के लिए प्रोत्साहित करना था। गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड में उन्होंने कहा था कि मुसलमान या सिखों के लिए अलग मताधिकारी मंडल है। यदि उन्हें स्थायी रूप से मुसलमान या सिख रहना पसंद है, पर अस्पृश्य को स्थायी रूप से क्या अस्पृश्य रखा जाए? क्या कोई ऐसा चाहता है? मानवता में विश्वास रखने वाला कोई भी सत्य प्रेमी तो यही चाहेगा कि समाज का कोई भी वर्ग स्थायी तौर पर अस्पृश्य न रहे।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, सिखों का अलग मत अधिकार तो स्वतंत्र भारत के संविधान में ही समाप्त हो गया था। मुस्लिमों का अलग मतदान मंडल तो आखिरकार देश के टुकड़े करने तक ले गया था।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे टुकड़े अस्पृश्यों के निमित्त भी हो, क्या ऐसा कोई राष्ट्रप्रेमी चाहेगा? ये प्रश्न है साथियों। मुस्लिमों की आबादी का एक काफी बड़ा भाग भौगोलिक दृष्टि से जिस तरह देश के उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में बसा हुआ था, उनके लिए उन भागों को देश से अलग किया गया।
0: जी जी।
1: दलित तो हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिखरे हुए थे, क्या उनके लिए लाखों दलिस्तान बनाने संभव थे? ऐसा कोई अलगाववादी आंदोलन चला होता तो लाखों गाँव में फैले अल्पसंख्यक गरीब अधिकांश अशिक्षित और अल्प शिक्षित दलितों की क्या हालत होती?
0: बिल्कुल।
1: एक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जोड़ने के मुद्दे पर हुई हिंसा के कारण मराठवाड़ा में कितने सारे दलित मोहल्ले आग में भस्म हुए थे। ये तथ्य जानने वाले लोग आसानी से समझ सकेंगे कि ऐसी मांग के कारण कैसी हिंसा फूट पड़ती है और उसमें दलित ही मारे जाएंगे, इस बात का गांधी जी को अंदाजा था। अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, उपवास के प्रारंभ के समय डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को साफ दिल से बात कह दी थी कि इस मामले से दलितों को मिलने वाले अधिकारों को यदि छोड़ना है तो इसके बदले में उन्हें जो संतोषप्रद लगे ऐसा कुछ और करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम तो जन्म से दलित हो, पर मैं अपनी इच्छा से दलित हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी दलितों के हित के लिए लड़ने को तैयार हूँ। केंद्रीय धारा सभा में दलितों को कितना प्रतिनिधित्व मिले, इस बाबत जब पूना में इकट्ठे दलित गैर दलित नेताओं में चर्चा परिचर्चा शुरू हुई, तब अंत में अम्बेडकर जितनी सीटों पर समाधान करने को तैयार हुए थे
1: उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सीटें दलितों को मिलनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का आग्रह था। गांधी जी के इस आग्रह के आधार पर दलितों को सीटें मिली थी। उपवास के समय तो गांधी जी को डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ तक कहा कि आप जितना मुझे समझते हैं उतना आपके साथी मुझे नहीं समझते।
2: बिल्कुल।
1: पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अंग्रेज सरकार ने उस समझौते के मुताबिक अपने फैसले में संशोधन किए। उनके तत्काल बाद हुई एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात जो वे नहीं समझे थे उसके बारे में कहा था कि गांधी जी ने उपवास के बाद जो समाधान किया था उतना गोलमेज परिषद में क्यों नहीं किया। यदि उन्होंने वैसा किया होता तो उपवास द्वारा उन्होंने जो कष्ट भोगा वह उन्हें भोगना नहीं पड़ता। यहाँ हमें गांधी जी के उपवास द्वारा सृजित वातावरण पर विचार करना चाहिए। इंग्लैंड में जब इस बाबत चर्चाएं चल रही थी तब वे मात्र एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार द्वारा चुन चुन कर बुलाए गए प्रतिनिधियों के बीच की चर्चा परिचर्चा थी। पूना में चल रही थी स्वर्ण हिंदू और दलितों के बीच, जहां विभाजन को उत्तेजित करने वाले अंग्रेज थे, यहां गांधी जी के उपवास कितनी जल्दी समाप्त हो इसकी चिंता करने वाले हिंदी थे। गांधी जी के उपवास ने अस्पृश्यता के प्रश्न बाबत पूरे देश का ध्यान एकाग्र किया था। गांधी जी के इस उपवास ने कशिश स्वर्ण हिंदुओं में अस्पृश्यता के पाप बाबत जितना स्वयं को दोषानुभव का भाव और दलितों में अपने न्यायोचित अधिकारों के बारे में जागरूकता का भाव पैदा हुआ था उतना शायद ही दूसरी किसी घटना की वजह से पैदा हुआ होगा।
2: जी हाँ,
1: गोलमेज परिषद के समय गांधी जी ने यह समाधान किया होता तो इसके पीछे उनके उपवास द्वारा पैदा किया गया नैतिकता के वातावरण का समर्थन नहीं होता।
2: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं उपवास प्रकरण को लेकर, ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में गांधी जी के उपवास प्रकरण की ओर। जैसा कि गीत से पहले श्रोता साथियों हम जान रहे थे, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो इस उपवास के दरमियान गांधी जी की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ी थी। अंजलि जी रोजाना की चर्चा परिचर्चाओं और उनकी बारीकियों का दबाव भी उनके शरीर पर जरूर असर डाल रहा होगा।
1: बिल्कुल,
0: पर उसे टिकाए रखने वाला एक तत्व था ईश्वर के प्रति गांधी जी की श्रद्धा। दूसरा तत्व था भारतीय जनता की गांधी जी के प्रति व्यक्त श्रद्धा। इसी जेल में शुरू होकर पुणे की पर्णकुटी में समाप्त होने वाला 21 दिन का उपवास आत्मशुद्धि के निमित्त था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में और हरिजन सेवा के कार्य में सत्याग्रही व्यवहार में कहीं कहीं आई दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए किया गया यह उपवास पूर्णतः आत्मशुद्धि के लिए ही था।
1: बिल्कुल,
0: आगा खान महल में किया गया उपवास एक राजनीतिक बंदी के मुख चित्रकार के समान था। 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद पूरे देश में नेताओं की जो धरपकड़ हुई और देश में तोड़फोड़ की जो घटनाएं घटी, उनके लिए सरकार गांधी जी को ही उत्तरदायी मानती थी। गांधी जी को इस बारे में वह कुछ कहने या लिखने नहीं देती थी। गांधी जी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उन्हें दोषी ठहराती हुई इन आरोपों के बारे में सरकार एक पक्षीय बयान दिए जाती थी। गांधी जी के पास सत्य को दबाकर रखने की इस कोशिश का एक ही उपाय उपवास का रह गया था। अंजलि जी,
1: बिल्कुल। श्रोता साथियों, इस उपवास के समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन से विषादग्रस्त सरकार ने इस आंदोलन को स्वयं सफलतापूर्वक कुचल डाला। ऐसा समझते हुए वह चैन का अनुभव कर रही थी। भारत के बारे में निर्णय करने वाले तीन दिग्गज प्रधानमंत्री चर्लित, हिंदी मंत्री एमरी और वायसराय लिन लिंथंगो तीनों कट्टर संस्थावादी के रूप में विख्यात थे। गांधी जी जेल में मरते हैं

0: तो उनको मरने देने की भी उनकी तैयारी होगी। इन लोगों के पत्र व्यवहार से पता चलता है कि गांधी जी अभी मरा क्यों नहीं। इनकी जांच पड़ताल विंस्टन चर्चिल ने एकाधिकार की थी। गांधी जी की मृत्यु हो और यदि लोग उपद्रव पर उतर आए तो इस उपद्रव को दबा देने के लिए पूना में टैंकों को तैयार रखा गया था। उपवास के समय भले ही गांधी जी मानसिक शांति महसूस करते हो पर उपवास से शारीरिक कष्ट तो उन्हें बहुत था। उपवास के तीसरे या चौथे दिन मुंह से उबकाई आने लगती और पानी तो ठीक पर थूक निकलने में भी मुश्किल पड़ने लगी। उपवास के ऐसे पूर्व अनुभव के कारण ही उन्होंने सरकार को पहले लिखकर बता दिया था कि उपवास के समय वे पानी लेंगे और पानी में सोडा बाइकार्ब के साथ जरूर पड़ने पर नींबू या संतरे की जाति के फल का रस डालेंगे। आगा खान महल के उपवास के समय मुंह से उबकाई आने की शुरुआत पहले ही हो गई थी।
1: बिल्कुल
0: पानी गले उतार पाना मुश्किल हो गया था। कशिश नींबू या संतरे के रस की कुछ बूंदे डालकर पानी पीने योग्य बनाया जाता था। हालांकि गांधी जी रस की बूंदे डालना यथासंभव टालना चाहते थे, परंतु पानी वे अवश्य पीना चाहते थे। कारण यह कि उपवास के कारण शरीर के जो कोष नष्ट हो जाते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए पानी लेना जरूरी था। तब भी विवशता में ही रस की बूंदे लेने की वे अनुमति देते। उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने वाली डॉक्टर सुशीला नायर इस संबंध में गांधी जी के आग्रह को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए सरकारी डॉक्टर चाहे जितना आग्रह करे तब भी वे पानी में ग्लूकोज या शहद जैसे पोषक तत्व नहीं मिलाने देती। पेशाब में एसीटोन जाने लगा और पानी लेना लगभग अशक्य बनने लगा। तब डॉक्टर ने नींबू या संतरे के रस की बूंदे बढ़ानी शुरू की। सरकारी लोग दुनिया भर में ऐसा प्रचार करने लगे कि गांधी जी बार बार उपवास करते भी नहीं, वे फलों के रस पर निर्वाह करते हैं। गांधी जी खुराक लेते हैं जिससे उपवास के समय उनका वजन घटने की बजाय बढ़ता जाता है। ये सिद्ध करने के लिए एक बार उन लोगों ने कई प्रकार की चालाकी आजमाने की सोची। एक दिन सवेरे नियम अनुसार उनका वजन लिया गया तो वो पिछले दिन से 4 बोतल अधिक निकला। डॉक्टर सुशीला और प्यारे लाल को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे जानते थे कि उनके शरीर के सारे लक्षण तो ऐसे थे कि गांधी जी अधिक से अधिक दुर्बल होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: उपवास के 21 दिनों उपरांत इस लेखक को गांधी जी के साथ आगा खाना महल की जेल में कैदी रखा गया था। गांधी जी के लिए लाए जाने वाले कांटे पर कुतूहल वंश में भी रोज अपना वजन लेता। उस दिन मैंने अपना वजन लिया तो वह पिछले दिन से 4 रतल अधिक आया। मैंने यह बात प्यारे लाल को बताई। फिर तो गांधी जी के साथ वाले अनेक अंतेवासियों ने भी उसी कांटे पर वजन करके देखा तो हर किसी का वजन सामान्य से लगभग 4 रतल ज्यादा निकला। उस कांटे की जांच पड़ताल करने पर मालूम पड़ा कि उसके साथ ही ऐसी छेड़छाड़ की गई थी कि उसमें वजन अधिक दिखे। गांधी जी के जीवन के अंतिम 2 उपवास शायद उनके सर्वोत्तम उपवास थे। 1947 में कलकत्ते के और 1948 में दिल्ली के उपवास ने एक ऐसी शक्ति प्रकट की थी कि जिसने सांप्रदायिक हिंसा के बेल को नाथ लिया था।
1: बिल्कुल
0: कलकत्ते में तो प्रत्यक्ष कौमी उपद्रव चल रहा था। तभी कशिश गांधी जी ने उपवास किए थे जबकि दिल्ली में दंगा उस समय बहुत बड़ी मात्रा में चालू नहीं हुआ था। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के समूह कभी भी उपद्रव कर डाले ऐसा वहाँ वातावरण था। पाकिस्तान की कराची में उस समय फूटे हुए हिंसा के प्रत्युत्तर में दिल्ली में हिंसा की लहर आएगी ऐसा भय था।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे श्रोता साथियों से कर रहे थे सबके गांधी प्रकरण में गांधी जी के उपवास को लेकर, ये बातें हमारी अगले रविवार को भी श्रोता साथियों से जरूर होंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े नी कितनी शांति मिले है। जैया हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। वागड़ रेडियो 90.8 FM प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, एकता अखंडता संप्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूँ, पंथ निरपेक्षता का सच्चा पथ तुमको बतलाता हूँ, उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत कर में लाया हूँ, इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज पढ़ाता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बातचीत रही थी महात्मा गांधी और भारतीय संविधान को लेकर। इसमें हमने जाना था कि किस तरीके से संविधान को लेकर गांधी जी की अवधारणा थी। इसमें हमने और भी आगे जाना कि ओद का संविधान और गांधी किस तरीके से रहा और गांधी जी का राम राज्य क्या था। यही आज हम बात करते हैं कि कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी।
1: बिल्कुल, जैसा कि अंजलि, अगर कैसी व्यवस्था चाहते थे गांधी जी, इसको लेकर हम बात करें तो दस्तावेज से यही पता चलता है कि गांधी जी दुनिया के दूसरे देश या पश्चिमी देशों की व्यवस्था को सिर माथे पर बिठाकर भारत का संविधान बनाने के विचार पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कभी अपने विचारों को थोपा नहीं। वे अपनी बातों और विचारों को समय समय पर अभिव्यक्त करते गए। शायद उन्हें यह एहसास था कि जो संविधान बनेगा वह उनके मन का संविधान नहीं होगा। उनका आग्रह यही था कि हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए जिसके केंद्र में समाज और गांव हो, न कि राज्य व्यवस्थाएं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, उन्होंने कहा था कि भारत ने दुनिया के सामने एक बेहतर संविधान प्रस्तुत किया है, किंतु यह भी सच है कि यह महात्मा गांधी के आदर्शों के संविधान से पूरा मेल नहीं खाता। गांधी जी भारत में पंचायत व्यवस्था की स्थापना चाहते थे और भारत के अधिकतर तत्कालीन नेता और नीति निर्माता इससे सहमत नहीं थे, लेकिन यह भी सच है कि इस संविधान ने मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों और अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर बहुत तार्किक विकल्प प्रस्तुत किए थे।
1: जी हाँ, इसी के साथ साथियों, अगर लोकतंत्र की बात करें तो यह एक मान्य तथ्य है कि केंद्रीकृत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से चलने वाला लोकतंत्र कोई अच्छा लोकतंत्र नहीं होगा। गांधीवादी संविधान में सन 1945 में लिख दिया गया था कि वर्तमान लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में धन की ताकत के घातक उपयोग के साथ ही चुनावों की व्यवस्था भी बेहद दोषपूर्ण और अनुपयुक्त है। बड़े निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं और उम्मीदवारों के बीच न तो कोई संवाद होने देते हैं, न ही कोई रिश्ता कायम होने देते हैं। जिसे हम जानते नहीं उसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। षड्यंत्रों और मिथ्या प्रचारों के बीच लोग नैतिक अनैतिक का फैसला कर पाने में असक्षम हो जाते हैं। इस विषय में गांधी जी कहते हैं, हम लोकतंत्र की नहीं भीड़ तंत्र की स्थापना करते हैं। सुसभ्य सक्षम और शालीन व्यक्ति चुनाव हार जाता है और बेईमानी, मोटी चमड़ी वाले लोग हथियार और भ्रष्टाचार के बल पर जीते हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। गांधी जी का स्पष्ट विचार भी था इस पर कि भारत में लोकतंत्र होगा पर यह एक केंद्रीकृत लोकतंत्र नहीं होगा, बल्कि भारत के 7 लाख गांवों में से प्रत्येक में एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। हर गांव की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था होगी। उनकी यह सोच कतई नहीं रही कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, स्त्रियों को दोयम दर्जे की नागरिकता जैसी अमानवीय व्यवस्थाएं और व्यवहार के साथ लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: वे भारतीय समाज के इस चरित्र को बदलकर लोकतंत्र की स्थापना करने का ख्वाब देख रहे थे।
1: बिल्कुल अंजलि, और संसदीय व्यवस्था यानी कि गांधी जी की दृष्टि में देखे संसदीय व्यवस्था को, तो गांधी जी भारत में ऐसी संसदीय व्यवस्था की उम्मीद कर रहे थे जो भारतीय व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गांव से शुरू होकर केंद्र तक आती है। वे इस बात से कतई सहमत नहीं थे कि भारत के लोकतंत्र में व्यवस्था केंद्र से शुरू हो और गाँव तक जाए। साथियों, हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा, अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो। ऐसा नहीं लगता, मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दे, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की जरूरत हम क्या समझते हैं। मुझे लगता है कि उनके चले जाने के बाद भी उनका बनाया

0: विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। वास्तव में हमें अंग्रेजी राज तो चाहिए पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। कहा जाता है अंजलि कि अंग्रेजों की संसद अन्य संसदों की माता है, किंतु मुझे नहीं लगता कि उस पार्लियामेंट ने एक भी अच्छा काम किया हो तब तक उस पर कोई दबाव न हो और वह कुछ काम नहीं करती है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, उन्होंने कहा कि बात बहुत स्पष्ट है कि संसद के सदस्यों का समाज से इतना गहरा जुड़ाव और संवाद होना चाहिए कि किसी को अपना दुख कहने की जरूरत ही न पड़े और संसद पहल कर दे। ऐसी स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि लोगों को झुंड में तब्दील होना पड़े और संसद को अपनी बात सुनाने के लिए चीखना और चिल्लाना पड़े। लेकिन इसके उलट इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के सदस्य दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं सिर्फ डर के कारण कि संसद कुछ काम करती है। बड़े सवालों पर चर्चा के समय उनके सदस्य पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उनके सदस्य इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनका दृढ़ विचार था कि केंद्रीकृत लोकतंत्र से व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ताकतवर बनता है और ताकत उन्हें पद भ्रष्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में ऐसा भी केंद्रीकृत लोकतंत्र प्रभावी हो सकता है जिसमें लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो और वे भारत के लोगों को उदासीन मतदाता के रूप में परिवर्तित होते नहीं देखना चाहते थे।
0: तो अंजलि, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमारी बातें बहुत ही अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, हमें जाना था कैसी व्यवस्था चाहते हैं गांधी जी, लोकतंत्र के बारे में जाना था, संसदीय व्यवस्था के बारे में जाना था। इसी के साथ जानते हैं गांधी जी और मौलिक अधिकारों के बारे में। तो अंजलि, महात्मा गांधी जी मानते थे कि मौलिक अधिकार जीवन के मूल आधार होते हैं। जब व्यक्ति को मूलभूत अधिकार मिलेंगे तभी वह समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: साथियों, भारत दमन, शोषण, सांप्रदायिक हिंसा, जातिवाद, भेदभाव, गरीबी और उपेक्षा की परिस्थितियों में आजाद हुआ, उस दौर में नागरिकों की उम्मीद जगाने के लिए उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा जरूरी थी।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अगर यही बात करें, गांधीवादी संविधान में मूलभूत अधिकार वाले अध्याय में दर्ज है, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे और जाति, वर्ण, पंथ, लिंग, धर्म या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इन आधारों पर वे रोजगार, लोक सामान्य व्यापार और वाणिज्य में किसी भी किस्म की अक्षमता का सामना नहीं करेंगे। अहिंसा और सार्वजनिक लोक नैतिकता के अधीन हर नागरिक को अपनी बात कहने, संगठन बनाने और संवाद करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही लोक व्यवस्था और नैतिकता के सिद्धांतों के अधीन हर नागरिक को अपनी निजी और सामाजिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता भी होगी। सभी नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सहेजने और विकसित करने की आजादी होगी। सभी नागरिकों को कुओं, तालाबों, मार्गों, विद्यालयों, स्थानीय निकायों या राज्य या निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी होगी। हर नागरिक को निःशुल्क बुनियादी शिक्षा हासिल करने का अधिकार होगा श्रोता साथियों, और हर नागरिक को हिंसा या विपरीत परिस्थितियों में पुलिस का संरक्षण पाने, अपने ईमानदार काम के एवज में जीवन यापन के लिए न्यूनतम वेतन पाने, स्वास्थ्य सेवाएं पाने, मतदान करने का अधिकार भी होगा।
0: जी हाँ बिल्कुल। और अंजलि, जैसा कि गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य को लेकर हम बात करें, तो महात्मा गांधी जी कर्तव्य को अधिकारों की बराबरी में रखते थे। वह कहते थे कि जब कर्तव्य निभाए जाएंगे तो अधिकार भी मिलेंगे, अगर कर्तव्य नहीं निभाए जाएंगे तो अधिकार मिलना संभव नहीं है। कर्तव्य के मामले में वे इन बातों से सहमत थे कि हर नागरिक राज्य के प्रति निष्ठा रखेगा, खास तौर पर राष्ट्रीय आपदाओं और विदेशी आक्रमण के समय हर नागरिक लोक कल्याण के विस्तार के लिए राज्य निधि में नगद सामग्री या श्रम के रूप में योगदान करेगा। हर नागरिक के निरीक्षण करेगा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति के द्वारा शोषण न किया जाए, और यदि वह शोषण देखता है तो उसका विरोध करेगा।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी कि गांधी जी का संविधान अधिकार और समानता के बारे में, श्रोता साथियों, गांधी जी कहते हैं कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्य का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। हर आदमी को जीवन की आवश्यकताएं पूरा करने का समान अधिकार है।
0: जी हाँ।
1: यही अधिकार पशुओं और पक्षियों के लिए भी है, और चूंकि प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा हुआ है श्रोता साथियों, और उस अधिकार पर कहीं से कोई आक्रमण हुआ हो तो उसका वैसा इलाज भी है। इसलिए हमारी समस्या यह है कि हम उस प्रारंभिक बुनियादी समानता को सिद्ध करने के लिए उस समानता के अधिकार से जुड़े हुए कर्तव्यों और इलाज ढूंढ निकाले। वह कर्तव्य है कि हम मेहनत करें, और वह इलाज यह है कि जो हमें मेहनत के फल से वंचित करे उसके साथ हम असहयोग करें।
0: जी हाँ साथियों, यही संविधान में शामिल गांधीवादी सिद्धांत को लेकर हम बात करें तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व कई कारणों से विशिष्ट माने जाते हैं। अंजलि, संविधान के भाग 4 में शामिल 15 अनुच्छेद, अनुच्छेद 36-51 तक इसके 4 संशोधन राज्य को निर्देशित करते हैं कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को इस तरह अपनाए और क्रियान्वित करें ताकि एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। दिलचस्प बात यह है कि इन नीति निदेशक तत्वों में कई ऐसे हैं जो गांधी द्वारा देश के समग्र विकास के लिए प्रकट विचारों से मेल खाते हैं। अनुच्छेद 39 जहां आजीविका और संसाधनों पर समान अधिकार की बात करता है तथा संपत्ति एकत्रित करने को हतोत्साहित करता है, वहीं अनुच्छेद 43 और 43B कुटीर उद्योग और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। साथियों, अनुच्छेद 46 कमजोर तबकों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों को रोकने वाली नीतियों की वकालत करता है। अनुच्छेद 48 गोवध तथा दुधारू पशुओं को मारे जाने पर रोक लगाने की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। इनमें सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के क्रियान्वयन की बात करता है। ये सभी विचार गांधीवादी सिद्धांतों के करीब है। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों में भी गांधी जी का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। भेदभाव के खिलाफ प्रावधान अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना अनुच्छेद 25 तथा अल्पसंख्यकों के हितों का बचाव करना अनुच्छेद 29, 30 ऐसे ही प्रावधान है।
1: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम आज हम और हमारा संविधान में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रही हैं कि किस तरीके से गांधी जी संविधान की व्यवस्था चाहते थे और उनकी दृष्टि में संविधान क्या था, और इसी के साथ हमने जाना कि गांधी जी की दृष्टि में कर्तव्य क्या थे, इसी में हमने जाना अधिकार और समानता के बारे में। अगले रविवार विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी श्रोता साथियों से फिर मुलाकात होगी। इसमें हम जानेंगे कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी।
0: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तक की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हम या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हम ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था।
2: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हम एक नई व्यंजन विधि को लेकर हाजिर हुए हैं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि हमारे बीच बातचीत की रहने वाली है वो है कच्चे केले की पौष्टिक टिक्की। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपके लिए ऐसी रेसिपीज लेकर आते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की पौष्टिक टिक्की। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कच्चे केले लगभग हर मौसम में मिल ही जाते हैं। ये सस्ते भी होते हैं और पोषण से भरपूर भी। यदि साथियों इन्हें सही तरीके से बनाया जाए तो यह बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिए एक अच्छा नाश्ता बन सकता है। तो आइए श्रोता साथियों, अब यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, यानी कि सामग्री के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको साथियों चाहिए होंगे 3 मध्यम आकार के कच्चे केले, उसके साथ ही 2 उबले हुए मध्यम आकार के आलू। श्रोता साथियों, ये आप विकल्प के रूप में ले सकते हैं क्योंकि टिक्की को बनाने के लिए हमें आलू की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप आलू उबले हुए इस्तेमाल में लें। 2 से 3 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन और ओट्स का पाउडर भी आप लें श्रोता साथियों। 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ यहाँ पर चाहिए। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई आप ले लीजिए। 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक जो कि कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया ले लीजिए श्रोता साथियों। 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी श्रोता साथियों, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आप यहाँ पर लेंगे। वो आप अपनी इच्छा के अनुसार भी ले सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग कम तीखा खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में श्रोता साथियों, आप लाल मिर्च पाउडर अपने इच्छा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार इस्तेमाल में यहाँ पर ले सकते हैं। इसी के आगे बताऊं तो 1/2 छोटा चम्मच हमें गरम मसाला भी उपयोग में लेना है। स्वाद अनुसार हम नमक का उपयोग करेंगे साथियों, साथ ही 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, और अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसी के बाद श्रोता साथियों, 2 से 3 छोटे चम्मच तेल आपको चाहिए होंगे जिसका उपयोग श्रोता साथियों आप टिक्कियों को हल्का सेकने के लिए करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अगर आपने सामग्री नहीं लिखी है तो मैं आपको फिर से सामग्री बताना चाहूंगी। जी हाँ साथियों, आपको 3 मध्यम आकार के कच्चे केले लेने हैं, 2 उबले हुए मध्यम आकार के आलू लेने हैं क्योंकि आलू का इस्तेमाल हम टिक्की को बांधने के लिए करेंगे, 2 से 3 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन या ओट्स का पाउडर हम लेंगे, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ लेंगे, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा टुकड़ा अदरक जो कि कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो कि आप अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस, 2-3 छोटे चम्मच तेल टिक्की को सेकने के लिए हम उपयोग में लेंगे साथियों। तो इस तरीके से हम इन सभी सामग्रियों को श्रोता साथियों इस्तेमाल में लेंगे। तो श्रोता साथियों, ये तो हमारी सामग्री यहाँ पर पूरी हो गई। तो अब आप इन सामग्रियों को इकट्ठा कर लीजिए श्रोता साथियों, क्योंकि आगे कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस व्यंजन को बनाने के लिए हम क्या विधि अपनाएंगे। तो विधि के बारे में जरूर जानेंगे श्रोता साथियों, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई की ओर। जैसा कि साथियों गीत से पहले हम केले की टिक्की बनाने की सामग्रियों को इकट्ठा कर चुके थे और जान चुके थे श्रोता साथियों कि क्या क्या सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इस स्वादिष्ट और पौष्टिक टिक्की को बनाने की। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले कच्चे केले को अच्छी तरह धो लेना है ताकि उन पर लगी मिट्टी या धूल साफ हो जाए। अब एक बर्तन या प्रेशर कुकर में पानी डालें, उन केलों को दोस्तों उनके छिलके सहित उबाल लें। यदि कुकर का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 2 से 3 सीटी पर्याप्त रहती है। केले बहुत अधिक नहीं गलने चाहिए साथियों, इस बात का आप ध्यान रखें, वरना जो पेस्ट बनकर रेडी होगा वो बहुत ज्यादा गीला होगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि केले को आपको बहुत अधिक गलने नहीं देना है। जब केले ठंडे हो जाएं साथियों, तब उनका छिलका उतार दें आप और अच्छी तरह उन्हें मसल लें, यानी कि मेश कर दें। यदि आप आलू का उपयोग कर रहे हैं तो उबले आलू को भी मेश करके इसमें मिला दें। दोस्तों आलू डालने से टिक्की आसानी से बनती है, इसलिए मैंने आपको सामग्री में कहा था कि अगर आप आलू का उपयोग करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आप केवल केले की टिक्की बनाना चाहते हैं तो आलू को आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि छोड़ भी सकते हैं। अब इस मिश्रण में आप बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जो कि आप अपनी इच्छा के अनुसार डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक और अमचूर या नींबू का रस आप डालें साथियों। इन सभी सामग्रियों को हाथों से अच्छी तरह मिलाएं ताकि मसाले हर हिस्से में समान रूप से मिल जाएं। यदि श्रोता साथियों आपको वो जो पेस्ट या मिश्रण बनकर तैयार हुआ है वो थोड़ा ढीला लग रहा है तो उसमें आप भुना हुआ बेसन या ओट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी टिक्की जो है वो थोड़ी कुरकुरी बनेगी और टूटेगी भी नहीं। अब आगे साथियों आपको क्या करना है कि हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर मिश्रण की बराबर बराबर लोइया आप बना लीजिए। उन्हें हल्का चपटा करके टिक्की का आकार देंगे आप। अब एक मोटे तले वाला जो तवा होता है या फिर आपके पास अगर नॉनस्टिक तवा है साथियों तो उसे आप गर्म करें, तवे पर थोड़ा सा तेल लगाएं और जो आपने टिकिया बनकर तैयार की है उन्हें तवे पर रखें और धीमी मध्यम आंच पर उन्हें पकाते रहें श्रोता साथियों। अब आप देखेंगे कि जब वह एक तरफ से सुनहरी हो जाती है तो आप उन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेकेंगे। याद रखिए श्रोता साथियों, अगर आप उन्हें जल्दी जल्दी पलटेंगे तो टिक्की टूट भी सकती है, इसलिए धैर्य रखें और उन्हें अच्छी तरह से पकने दें। दोनों तरफ से सुनहरी और हल्की कुरकुरी होने पर श्रोता साथियों टिकिया बनकर तैयार हो जाएंगी। इसे हरी धनिया या फिर पुदीने की चटनी, दही या घर की बनी टमाटर की चटनी के साथ आप परोस सकते हैं। ये खाने में श्रोता साथियों आपको काफी स्वादिष्ट लगेगी। तो ये तो दोस्तों हमारी केले की टिक्की बनकर तैयार हो गई। अब आगे कार्यक्रम में कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं जो मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी यहाँ पर सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम दादी माँ की रसोई की ओर। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले हमारी कच्चे केले की टिक्की बनकर तैयार तो हो गई थी, यही कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, स्वाद और सेहत का सबसे अच्छा मेल घर के बने भोजन में ही मिलता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को रोज एक जैसा नाश्ता न देकर सप्ताह में एक दो दिन ऐसी पौष्टिक रेसिपियां जरूर बनाएं। अपने घर के बुजुर्गों से भी श्रोता साथियों, आप पारंपरिक व्यंजन बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें स्वाद के साथ साथ अनुभव और स्वास्थ्य भी छिपा हुआ होता है। साथ ही मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों का भी आप अधिक उपयोग करें, इससे श्रोता साथियों, भोजन ताजा भी रहेगा और खर्च भी कम होगा। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि भोजन के साथ पर्याप्त पानी पीने, नियमित व्यायाम करने और संतुलित जीवन शैली अपनाने की आदत भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना है तो सिर्फ स्वास्थ्यप्रद खाना खाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अच्छी जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है श्रोता साथियों। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने श्रोता साथियों, कच्चे केले की पौष्टिक टिक्की बनाने की आसान स्वादिष्ट विधि को समझा। उम्मीद है श्रोता साथियों कि आप इसे अपने घर में जरूर बनाएंगे और पूरे परिवार के साथ इसका आनंद लेंगे। यदि आपके पास भी दोस्तों कोई पारंपरिक स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी है तो आप हमें अवश्य भेजिए, क्योंकि हो सकता है साथियों कि अगली बार आपकी रेसिपी दादी माँ की रसोई का हिस्सा बने। इसलिए आप अपने अनुभव और अपनी इस पारंपरिक व्यंजन विधि हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे श्रोता साथियों, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नए स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
4: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जैया हवा में आपड़े हाल रह हां ई भी आपड़ा थकी कई आश